0: शरीर में मन मुख्य है। मन में कुत्सित विचारों के पैदा होते ही शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ना प्रारंभ हो जाता है। मन को उपयोगी कार्यों में लगाए रखना स्वास्थ्य प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है। नदी की प्रवाहमान धारा की तरह हमारे काम सरल स्वाभाविक रूप से होते रहें, तो स्वास्थ्य बहता हुआ आकर स्वयं हमारे चरण धोएगा। रोगी होना शरीर का स्वभाव नहीं है, रुग्णता प्रकृति नहीं विकृति है। रोगी व्यक्ति कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता। आध्यात्मिक उन्नति की पहली शर्त शारीरिक स्वास्थ्य है। शरीर की थकान से पहले मनुष्य का मन थक जाता है। शरीर के रोगी होने से पहले मनुष्य का मन रोगी हो जाता है। इसलिए हमें मानसिक क्लांति पर विजय पाने का उद्योग करना चाहिए। जब तक चरित्र में अवगुण रहेंगे आदर्श स्वास्थ्य की आशा व्यर्थ है। कुविचार मानसिक विकार है और चूंकि शरीर मन का अनुयायी है मानसिक विकार शरीर को विकृत कर देते हैं।
1: सुप्रभात, नमस्कार। एक नई सुबह, एक नई उम्मीद और एक नई ताजगी के साथ ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज से जहां होती है दिल से दिल की बात। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 5:55 हो रहे हैं। इसी के साथ ही आरंभ होती है हमारी आज की प्रभातकालीन प्रसारण सभा। इस सभा को सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का मैं आपके रेडियो साथी आरजे पूरा दुनिया आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से हार्दिक स्वागत करती हूं। श्रोताओं, इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ है स्टूडियो तथा HPT में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक दीतांग जंग तथा तकनीकी अभियंता दीन योग। आज सन 2026 की जुलाई महीने की 8 तारीख है और दिन है बुधवार। रोजाना की तरह आज भी सभा में हम आपके लिए पेश करेंगे ढेरों ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ देश और दुनिया के ताजा तरीन खबरें। अब इस शुभकामना के साथ कि आपका दिन खुशियों और सफलताओं से भरी हो, आइए सभा की शुरुआत करते हैं।

दोस्तों, आज की पहली प्रसारण सभा की शुरुआत करें उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी टनक आकाशवाणी

के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार 6:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम भक्ति गीत। गालो श्रोताओं का समाचार आप सुन पाएंगे 6:40 पर। 6:45 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे। 7:10 पर आप सुन पाएंगे आपतनीय श्रोताओं का समाचार।

7:15 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट। 7:35 पर आप सुन पाएंगे तागिन श्रोताओं का समाचार। सदाबहार कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 7:40 पर। सुबह के 8 बजे से लेकर 8:40 तक आप बारी बारी से सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और आकाशवाणी के शिलोंग केंद्र से प्रसारित नोटिस न्यूज। सुबह के 8:40 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हेलो ईटानगर।

सुबह के 9 बजे से लेकर 9:10 तक बारी बारी से आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचारों को। सुबह के 9:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम फिल्मी गपशप।

सुबह के 10 बजे आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और आप सुन पाएंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। सुबह के 10:10 पर प्रसारित होंगे आपका पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। 11 बजे से लेकर 11:10 तक बारी बारी से आप सुन पाएंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तो दोस्तों, ये थे अब से लेकर सुबह के 11:10 तक प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का रूपरेखा। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं, विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल

0: की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर ने कल अपनी दो दिन की बहरीन यात्रा समाप्त की। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं, तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन 2026 में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेन देन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta yesterday, Mr. Modi said, India follows path of development, not expansionism.
2: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai, aur isliye hum Bharat mein kehte hain, सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with his Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. The Prime Minister's office PMO held a high-level review meeting yesterday to review possible impact of El Nino on various sectors and preparedness measures. The meeting was held under the chairmanship of Principal Secretary to Prime Minister Dr. P.K. Mishra at the Seva Tirth. Secretaries and senior officials of more than 15 ministries were present at the meeting. Dr. Mishra directed that the overall situation

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति गीत या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे गालो श्रोताओं का समाचार।

Si akasone tanagara tanaga tamrogam jabamdulla tenlo folga alopine yirna rasoka galome kena agama menjira menken menjina ngo gumarlendo Prime Minister Narendra Modi India gal Indonesia ga development plan emne thau min sidula yo barila mele sadagam ne ka min sidoba amla Jakarta lor duna kam to des anyi ga partnership anyi pinina ne amdula sembada nguni ga manamonom lakhen bachko am to yo laga ija nguni ga isilo rebam sideko Nicobar lola state of Malacca lom tu sogo ngunyam ne takama ba yechin minerals ok ngui lala maram tu mentala des aniga cyber security medicine ok trade do sama da laken go ba kagur min jlas ko amla mentam ta tu Arunachal Pradesh ko education minister ne petition ala commissioner am jat tak munji governor KT Parnaik ne lok bhavan lo karik sido Arunachal Pradesh ke ija ga education ga lagi sigam ne jap kendola classroom extension monam सबसे हमारो बा स्कूल बाउंड्री वाल मोनाम ओके टीचर्स गद ग दूधे के क्वार्टर्स ओके आउ गद ग दूधे के हॉस्टल ओके पाइकोना वाटर सप्लाई अबा गद सिम ने अलजा बनारो डिस्ट्रिक्ट का हेड टीचर्स एलएमसी एसएमसी गद लेकिन गोबे कमिटी दुखुम गला रिदो ना कम तो मेंटाला स्टेट के स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटी गद कम अरपादोला दिन सि जा ब जारबों गमलिंग गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जोतम ने काकेन बनाम नासु लोक मोबाइल लिख दो बमला मेम पाजी तो यो लगा गुनो पेशेदिति सबने आलबा जीपो लागू मिसेत लोककम पोलिता बसो को आलिग रहम तो सिगिम ताला गवर्नर बु आगमम तोलिग मिंग दुला मरो केन लोग टीचर्स ट्रांसफर मोनमम कम क्विक तो यो लगा लेकलो टीचर्स ए स्टूडेंट रेमा को स्कूल लो रेदोला पोलो दरमा अमने प्रीबा पाला रे तो इजा स्टूडेंट टीचर्स रेशियो अम खादु कोला पोस्टिंग दिनम सिगिम ने कालिग जा दुना कमला गवर्नर बु मेन टू गाले आलोलो चीफ सेक्रेटरी निर्मल मनीष कुमार Chamni gola la kenna ba buta pota senior officers gadga kaba dokumam duga dula government ga yona scheme ko kadu do egam ne public am alba mentum to kam tu mentala tb mukt bharat abhiyan am arpa dula naro senior officers gadam ne taula nono tb rina patient lok akenja go medical korcha am kadu mi si bolo ngoi arunachal state sigi tb pre state ba riram tu sigim ne state government din si jab maduna kamla mentam ta tu mentala chief engineers gadam ne ijag aliba नाम लोग का मुलिक नाम स्मार्ट स्मितार का अभाव ने चेनपक गोबे अमला पोल अमने लेनी दूर अब गोबे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स बेंदोर्स और का दोलो का तादर खादर नगादम ने कबा दोग दोला मेंटो मिंस तो काम तो ताने का दोन गलो मेंकेन अगम सिम आकाशवाणी ठाने कर लोग का तफादो रूरल डेवलपमेंट गला पंचायती राज का निगम दिन ओजिंग टशिंग गाले आलोलो दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का लेजिना ब फॉलो फूम गोबर लोदुम का नाम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लोग का ट्रेनिंग रिना का दमने सर्टिफिकेट अपने जिदूला भारत देश का छेनु चर लोकम नौकरी अपने जिदू ना कर अम्तो सगो निगम्बु मेंठाला सिलो मरो यद स्किल सम छेंदा कुन अगर दोपाते पाला रेदे कंपार अम्दोला स्टेट सो का यूथ नरु अपने नगुना स्किल सम छेंदा कवा स्टेट गवर्नमेंट रिका तथर दोना अम्तो मेंठाला सो का जा लगा ब पोलो फूम ट्रेनिंग सिगिम ने रिगा दूना कर अम्तो प्रोग्राम सिगिम अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन का द रिगतो पीपा वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 16 लो स्पेन या पोर्चुगल हमने 1-0 लो का तुपागला क्वार्टर फाइनल लो बेल्जियम हम लुगा लो तुम्हें जितो पर हम दाग पोर्चुगल का कैप्टन क्रिस्टियानो रोनाल्डो चिन पीपा वर्ल्ड कप लो को रिटायरमेंट लादो कुना कम ला सोशल मीडिया लो में केन जीतो तवांग डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ टाउन मजिस्ट्रेट बदूना निर्मल नावांग टूटन ला इंजीनियर फुरफा लामू ओक अर्बन अफेयर्स के निगम गद इंगोदोला लोम नंबर तवांग गनेरो मार्केट न्यू मार्केट ओक

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे गालो श्रोताओं का समाचार। अगर आप गालो श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर का मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर, या फिर आप न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप के द्वारा भी हमारे कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। तो सब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे, जहां हम बात करते हैं हमारे स्वस्थ जीवन शैली की और साथ ही सुनेंगे चंद खूबसूरत नगमे में।

तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज के सुबह सवेरे कार्यक्रम। और दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरी रात सिर्फ 3 या 4 घंटे की नींद ली हो और अगली सुबह अलार्म तो बज गया लेकिन उठने का बिल्कुल मन नहीं हुआ। किसी तरह तैयार होकर काम या स्कूल कॉलेज पहुंच गए लेकिन पूरे दिन जम्हैया आती रही, छोटी छोटी बातें याद नहीं रही, किसी का नाम या फोन रखने की जगह तक भूल गए, किसी ने हल्का सा कुछ कह दिया और बिना वजह गुस्सा आ गया। शाम तक ऐसा लगा जैसे पूरे दिन कोई भारी बोझ उतारकर चल रहे हो। दोस्तों, अगर ऐसा कभी कभी होता है तो ठीक है, लेकिन अगर ये रोज की आदत बन जाए तो समझ लीजिए कि आपकी बॉडी एक सिग्नल दे रही है कि मुझे पूरी और अच्छी नींद चाहिए। हम अक्सर नींद को सिर्फ आराम समझते हैं लेकिन साइंस कहती है कि जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा शरीर और दिमाग अपना सबसे जरूरी काम कर रहे होते हैं। सबसे पहली बात, हमारा ब्रेन यादों को मजबूत बनाता है। पूरे दिन हम कितने ही बातें करते, सुनते और सीखते हैं। अगर हमें अच्छी नींद मिलती है तो ब्रेन जरूरी इन्फॉर्मेशन को संभाल कर रखता है और बेकार इन्फॉर्मेशन को अलग कर देता है। इसी वजह से स्टूडेंट्स को एग्जाम के दौरान और प्रोफेशनल्स को किसी प्रेजेंटेशन या मीटिंग से पहले अच्छी नींद लेने की सलाह दी जाती है। सिर्फ देर तक पढ़ने से नहीं बल्कि सही नींद लेने से भी याद रखने की क्षमता बढ़ती है।

और दूसरी बात, हमारे शरीर इसी दौरान रिपेयर होता है। दिन भर काम करने के बाद मसल्स थक जाती है और सेल्स को भी रिपेयर की ज़रूरत होती है। सोते वक्त बॉडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है जो टिश्यूज और मसल्स की मरम्मत में मदद करता है। इसीलिए एथलीट्स और फिटनेस एक्सपर्ट्स भी रिकवरी के लिए अच्छी नींद को बहुत ज़रूरी मानते हैं। तीसरी बात बहुत ही दिलचस्प है। रिसर्चर्स के मुताबिक सोते वक्त हमारा ब्रेन अपनी सफाई भी करता है। जहाँ दिन भर काम करते हुए ब्रेन में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा होते रहते हैं, नींद के दौरान एक नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम इन्हें बाहर निकलने का काम करता है। ऐसा सोचिए जैसे रात को सफाई कर्मचारी सड़कों को साफ करते हैं ताकि सुबह शहर नया और साफ दिखे, वैसे ही हमारा ब्रेन भी नींद के

और अब बात करते हैं हार्ट और बॉडी की। अगर हम रोज कम नींद लेते हैं तो धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, हार्ट पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है और डायबिटीज जैसे लाइफस्टाइल डिजीज का रिस्क भी बढ़ सकता है। यानी नींद सिर्फ थकान दूरी नहीं करती बल्कि हमारे दिल की हिफाजत भी करती है। इम्यूनिटी भी नींद से जुड़ी हुई होती है। जब हम अच्छी नींद लेते हैं तब हमारी बॉडी इन्फेक्शन से लड़ने वाले सेल्स को और मजबूत बनाती है। इसी वजह से जब हम बीमार होते हैं डॉक्टर्स सबसे पहले कहते हैं अच्छी तरह आराम कीजिए और पूरी नींद लीजिए। नींद हमारी बॉडी को रिकवर करने में मदद करता है। दोस्तों आगे और भी ढेर सारा बातें करेंगे, उससे पहले लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक और सुनते हैं सुबह सवेरे कार्यक्रम का सबसे पहला गीत स्त्री तू फिल्म से खूबसूरत। इस गीत को गाया है सचिन जिगर और विशाल मिश्रा ने।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस वक्त आप बने हुए हमारे साथ सुबह सवेरे कार्यक्रम में। दोस्तों हम बात कर रहे थे कि अच्छी नींद कैसे हमारे शरीर को प्रभावित करती है, और अब बात करते हैं मूड की। आपने कभी नोटिस किया होगा कि नींद पूरी ना हो तो छोटी सी बात भी बुरी लगने लगती है, गुस्सा जल्दी आता है, स्ट्रेस ज्यादा महसूस होता है और किसी काम में मन ही नहीं लगता। अच्छी नींद हमारे इमोशंस को बैलेंस रखने में मदद करती है, जिससे हम ज्यादा शांत, खुश और पॉजिटिव महसूस करते हैं। एक और जरूरी बात, नींद हमारी सेफ्टी से भी जुड़ी हुई होती है। जी हाँ, कम नींद लेने पर रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है। ड्राइविंग करते वक्त या मशीन चलाते वक्त एक पल की लापरवाही भी बड़ा हादसा बन सकती है। इसीलिए नींद को रोड सेफ्टी और वर्कप्लेस सेफ्टी का भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जाता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ ज्यादा देर तक सोना ही काफी नहीं है, क्वालिटी स्लीप भी उतनी ही जरूरी है। अगर रात भर बार बार नींद टूट रही है या आप उतने के बाद भी थकान महसूस करते हैं, तो बॉडी को वो रिकवरी नहीं मिल पाती जिसकी उसे जरूरत होती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ज्यादातर एडल्ट्स को हर रात 7 से 8 घंटे की अच्छी क्वालिटी नींद जरूर लेनी चाहिए।

और दोस्तों आखिर में एक छोटी सी मिसाल या एग्जांपल, ऐसे सोचिए कि आपका मोबाइल फोन अगर उसे चार्ज ही ना करे, अपडेट्स इंस्टॉल ना होने दे और स्टोरेज कभी क्लीन ना करे, तो कुछ ही दिनों में उसकी परफॉर्मेंस लो हो जाएगी। हमारा शरीर और दिमाग भी कुछ ऐसा ही है। नींद हमारी बॉडी के चार्जर भी है, रिपेयरिंग भी और मेंटेनेंस भी। तो दोस्तों आज का हेल्थ मंत्र बस इतना सा है कि हेल्दी खाना, रेगुलर एक्सरसाइजेस और अच्छी नींद, ये तीनों मिलकर एक हेल्दी जिंदगी की बुनियाद बनाते हैं। इसीलिए आज रात अपनी नींद से समझौता मत कीजिएगा, क्योंकि कल की बेहतर सुबह आज की अच्छी नींद से शुरू होती है।

तो दोस्तों, स्वस्थ जीवन शैली की बातचीत में आज बस इतना ही। आइए अब सुबह सवेरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला गीत। युवराज फिल्म से तू मेरी दोस्त है, इस गीत को गाया है बेनी डायल और श्रेया घोषाल ने।

0: दोस्तों, कार्यक्रम का अंतिम गीत आपने सुना दिल जले फिल्म से, जिसके आने से कुमार सानू की आवाज में। इसी के साथ ही सुबह सवेरे कार्यक्रम का ये अंक यही समाप्त होते हैं। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आपातकालीन श्रोताओं का समाचार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गालो श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। अभी आप सुनेंगे आपातकालीन श्रोताओं का कार्यक्रम।
1: सी आकाशवाणी ईटानगर जीरो का तन प्रोग्राम तमिल मिलन बिली कपे जा पसर नुन तानु पुमे तपतो दो सिरो कपुय लुको इनसी दुयुवां का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हु स्ट्रॉगर इंडिया इंडोनेशियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पग्योला लुने सी अन्य कंट्री का प्रोस्पेरिटी में कौन सी कंट्रीब्यूट ममा सी रीजनल एंड ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी मनामी कंट्रीब्यूट मदो हला लुको ने। और इंडोनेशियन पार्लियामेंट इन जकार्ता हो का इने कुन आला हो का एड्रेस मिली हो मिस्टर मोदी हु लुने इंडिया ला इंडोनेशिया का रिलेशनशिप अनोखू दोकू हो अन्य सिमिलर डेमोक्रेटिक वैल्यूज में शेयर मधु हला लुको ने। और प्राइम मिनिस्टर हिलुने इंडिया हि डेवलपमेंट पीस स्टेबिलिटी ला प्रोस्पेरिटी में बिलीव मुटु हला लोको ने। हो मिस्टर मोदी हि कलेक्टिव एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म ला यूनिलेटरल एक्शन अगेंस्ट रीजनल सिक्योरिटी का अनासुनेमी स्ट्रेस बिला लोको ने। हो मो ग्लोबल साउथ स्टेबिलिटी इंडो पैसिफिक मलामी एम्पसाइज मने हला लोको ने। इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट में एम्पसाइज मला प्राइम मिनिस्टर हि क्लोजर कोलाबोरेशन इन साइबर सिक्योरिटी इमरजेंसी प्रिपेयरनेस ला मेरीटाइम कोऑपरेशन स्पेनिंग फ्रॉम ग्रेट निकोबार टू द स्ट्रेट ऑफ मालाकामी एडवोकेट मने हला लुकोने। एजुकेशन मिनिस्टर पी डी सोना का आगी हो कमिश्नर एजुकेशन अमजद ताक गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल के टी फर्ने का आगी हो लोक भवन ईटानगर हो इनकुन आलो हो दुकु आको दोला मने हला लुकोने। हो का दुकु दुली हो मोलू स्टेट हो का ओवरऑल एजुकेशनल सिनेरियो में रिव्यू मिला हो इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग में नितंबना स्ट्रेंथनिंग मकिनो ने का पार्टिकुलर फोकस जारबम गामलिंग गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जोते में का डिटेल डिस्कशन में मने हाला लोको ने। हो गवर्नर हे एम्पसाइज मिला सिसी का एग्जिस्टिंग चैलेंजेस का मेजर्स में लाला हो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव ला इंफ्रास्ट्रक्चरल स्टैंडर्ड्स में का इम्प्रूव मसन में मिला फैकल्टी मेंबर्स आतंका पुगो हो तैलिमो तकाजला मने हला लुको ने। हो गवर्नर डिपार्टमेंट का रिफॉर्म ओरिएंटेड अप्रोच मी आसान दिलाना एजुकेशन मिनिस्टर मी टीचर्स रजिस्ट्री पोर्टल का ट्रोपा का टीचर ट्रांसफर सिस्टम में का इम्प्लीमेंट मने मी कमेंट मने हला लुको ने। हो मोलोने सिका इनिशिएटिव ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी ला इक्विटेबल डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स अक्रॉस स्टेट में एनहेंस मला लर्निंग आउटकम्स में इम्पोर्टेंस विला स्ट्रॉगर एजुकेशन सिस्टम है दो किंदो हला लोको ने। मिनिस्टर ऑफ आर डी एंड पंचायती राज ओजिंग तासिंग है इनेकुन आलो हो दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2.0 होका सक्सेसफुल ट्रेन कैंडिडेट्स आतंका अपॉइंटमेंट लेटर में डिस्ट्रीब्यूट मबुने को हला लोको ने। अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन का पुलो बारिया स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का सक्सेसफुली कम्प्लीट मुगको पत्रोपा पैनल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी सो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आतामी अक्रॉस कंट्री हो प्लेसमेंट में भी ने हला लुको ने। सोशल मीडिया पोस्ट हो ओजिंग है लुने ने सिका अचीवमेंट मोलू का रूरल यूथ आतामी एम्पावर मला इंडस्ट्री रिलीवेंट स्किल्स हो एम्प्लॉयबिलिटी में एनहेंस मला हो सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज में का क्रिएट मने मोलू का कमिटमेंट भी नहीं रिप्लेक मुदो हला लोको ने।

meteorological center Itanagar he lower siang east siang lower dibang valley lohit la namsai district pa orange alert me forecast mane halalukone hosaka district atanka isolated places so yapngela dolya bela modoya si he urala da hokino hala lukone hemi tu sila meteorological center Itanagar he anya hela kanue district atampa mana yellow alert me forecast mane hala lukone pipa world cup फुटबल हो बेल्जियम हो यूनाइटेड स्टेट में 4-1 पा 16 राउंड हो तुम्हें बने हला लुको ने होसे में बेल्जियम हो स्पेन में क्वार्टर फाइनल हो लॉस एंजल्स स्टेडियम हो कार्पोपोपो अलो हो पेस मकिन हो हला लुको ने हो कपियो हो स्पेन हो पोर्टुगल में 1-0 राउंड 16 मैच डॉलर स्टेडियम हो इनकुन अली हो दीपित मला ला क्वार्टर फाइनल हो चाने हला लुको ने हो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो अनाउंस मला लुकोने ने आली ने नेक्स्ट पीपा वर्ल्ड कप हो मो आकोता कोमा हला लुकोने उसरो कतान बुलो कोसन हम कने सीसी बसी प्रोग्राम में मलिम बजे कपे जा पसरो ननो हागे कोमोला लगांगा न्या कबसने में तफा केंदो

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आपातानी श्रोताओं का समाचार। आपातानी श्रोताओं के आगे के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर का विद्युमय 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलो हर्ट्ज पर। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा हर्ट्ज पर, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों, अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट, जहां हम आपको बताएंगे आज के यानी 8 जुलाई की ऐतिहासिक घटनाएं और साथ ही राजधानी ईटानगर से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियां।

तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का मॉर्निंग इंफोटेनमेंट कार्यक्रम। और कार्यक्रम के आरंभ में जानते हैं इतिहास के पन्नों में और जानते हैं क्यों खास है आज का दिन। भारत तथा विश्व इतिहास में 8 जुलाई का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। तो आइए नजर डालते हैं 8 जुलाई की ऐसे ही कुछ ऐतिहासिक घटनाओं पर। 8 जुलाई 1497 को वास्को द गामा पोर्टुगल के लिस्बोन बंदरगाह से भारत के लिए अपनी ऐतिहासिक समुद्री यात्रा पर निकले। लगभग 10 महीने की कठिन यात्रा के बाद वे मई 1498 में भारत के कोझिकोड पहुंचे। उनकी इस यात्रा ने यूरोप और भारत के बीच सीधे समुद्री व्यापार का रास्ता खोल दिया और विश्व व्यापार का इतिहास बदल दिया। 8 जुलाई 1889 को प्रसिद्ध अमेरिकन बिजनेस न्यूज़पेपर द वॉल स्ट्रीट जर्नल का पहला एडिशन प्रकाशित हुआ। आज ये दुनिया के सबसे प्रभावशाली आर्थिक और व्यापारिक अखबारों में से एक माना जाता है और ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ी खबरों का विश्वसनीय स्रोत भी माना जाता है। आठ जुलाई 1947 को अमेरिका के रोसवेल से जुड़ी एक रहस्यमय घटना सामने आई, जिसे रोसवेल इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में कहा गया कि फ्लाइंग डिस्क मिली है, लेकिन बाद में अमेरिकन सेना ने इसे वेदर बलून बताया। ये घटना आज भी यूएफओ और एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल लाइफ से जुड़ी सबसे चर्चित घटनाओं में शामिल है। ज्योति बासु का जन्म 8 जुलाई 1947 को हुआ था। वे भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेताओं में से एक थे। उन्होंने 1977 से 2000 तक वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी और लैंड रिफॉर्म्स और पंचायत राज को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

दोस्तों, इतिहास के पन्नों से आज बस इतना है। अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और इसी बीच सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। दोस्ताना फिल्म से जाने क्यों विशाल ददलानी की आवाज में, और इस गीत के तुरंत बाद हम नजर डालेंगे राजधानी ईटानगर से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियां। तो कहीं जाइएगा नहीं और सुनते रहे अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात।

दोस्तों आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और नजर डालते हैं राजधानी ईटानगर से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। दी अरुणाचल टाइम्स की पहली हेडलाइन से, गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट्स कमिटी टू एग्जामिन फिजिबिलिटी ऑफ अबोल्यूशन ऑफ 1820 रिजर्वेशन रेशियो। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 1820 रिजर्वेशन रेशियो को समाप्त करने की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए 6 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की अध्यक्षता उद्योग मंत्री न्यातो दोकम करेंगे। सरकार का कहना है कि सभी पक्षों से विचार विमर्श के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। वुमेन हैक्ड डेड बाय हस्बैंड इन आलो। वेस्ट सियांग जिले के आलो में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। पुलिस के अनुसार एक व्यक्ति ने कथित रूप से अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना की जांच जारी है और पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। अगली हेडलाइन है, अपसू 6 अर्ली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेनेंसी एक्ट। ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन यानी अपसू ने अर्बन अफेयर मंत्री बालो राजा से मुलाकात कर टेनेंसी एक्ट को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की है। संगठन का मानना है कि इस कानून के लागू होने से किराएदारी व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता और व्यवस्था आएगी। अगली हेडलाइन है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोनामैन कॉल्स फॉर प्रैक्टिकल अप्रोच फॉर सेल्फ रिलायंस इन डेयरी प्रोडक्शन। उप मुख्यमंत्री चोनामैन ने राज्य को डेयरी उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर बाहर से दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स पर निर्भरता कम की जा सकती है, जिससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। गवर्नमेंट रिव्यूज अरुणाचल्स ओवरऑल एजुकेशन सिनेरियो। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने उच्च शिक्षा संस्थानों को और मजबूत बनाने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर बुनियादी सुविधाओं पर विशेष जोर दिया है। अगली हेडलाइन है, ट्रेंड यूथ्स अंडर डीडीयू जीकेवाई 2.0 रिसीव अपॉइंटमेंट लेटर्स। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ओजिंग तासिंग ने डीडीयू जीकेवाई 2.0 के तहत प्रकाशित युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर्स वितरित किए। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के बाद रोजगार से जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। अगली हेडलाइन है, लोवांग अर्जेस यंगर जनरेशन टू प्ले एक्टिव रोल इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन। वन एवं पर्यावरण मंत्री वंकी लोवांग ने वन महोत्सव वीक के समापन पर युवाओं से वनों के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रकृति की रक्षा करना हम सब की साझी जिम्मेदारी है। अगली हेडलाइन है, जोस्टल पार्टनर्स विद जेडएफएम 2026 एज अकोमोडेशन पार्टनर। जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक 2026 के लिए जोस्टल को आधिकारिक अकोमोडेशन पार्टनर घोषित किया गया है। इससे देश विदेश से आने वाले पर्यटकों और संगीत प्रेमियों को बेहतर रहने की सुविधा उपलब्ध करने में मदद मिलेगी। राजधानी ईटानगर से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज बस इतना ही। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आनंद लेते हैं एक और बेहतरीन गीत का। आप सुन पाएंगे वीर फिल्म का सलाम आया श्रेया घोषाल और रूप कुमार राठौर की आवाजों में।

दोस्तों, इस खूबसूरत गीत के साथ ही मॉर्निंग इंफोटेनमेंट कार्यक्रम का ये अंक यही समाप्त होते हैं। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे तागिन श्रोताओं का समाचार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर दोस्तों आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सदा बहार, जहां हम आपको सुनवाएंगे कुछ सोदी म्यूजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला गीत सुनते हैं उमरा जान का, बहुत ही खूबसूरत गीत आंखों की मस्ती आशा भोसले की आवाज में।

0: under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: जी हाँ दोस्तों, अरुण FM 103.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, कर्ज फिल्म से ओम शांति ओम, किशोर कुमार की आवाज में।
2: तुमने कभी किसी से प्यार किया?
3: किया।
2: कभी किसी को

दोस्तों, इस गीत के साथ ही सदाबहार कार्यक्रम ही समाप्त होते हैं। यह आकाशवाणी टनगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह के 8 बजे से लेकर 8:40 तक

0: कि एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
3: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और सेक उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। पंदास गुप्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
4: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने 3 दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमरीकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयर ट्रंक द्वारा भारत में AI तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वहीं 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ निश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत पहली जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और इसके आसपास

0: के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
1: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 एसपी हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
2: अमरीका के एक अधिकारी ने बताया कि अमरीका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीब आबादी ने कहा कि अमरीका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमरीका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तर्कश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साक का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही, पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और हरी भरी, 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृह मंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था। अमर उजाला की सुर्खी है, भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी, 12 किलोमीटर तक लंबा जाम, दोपहर 11:30 बजे 47.5 डिग्री जैसी तपिश। आसमान से राहत बरसते ही शिमला की तरह सुहानी होती गई दिल्ली की शाम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. India and Indonesia strongly condemn terrorism in all its forms and call for decisive and coordinated international efforts to combat this menace. Prime Minister Narendra Modi becomes first Indian Prime Minister to address Indonesian Parliament, calls for deeper strategic partnership between the two countries. Prime Minister's office reviews El Nino impact, asks central ministries to work with states on preparedness measures. ED conducts searches at multiple locations in Kolkata in connection with financial irregularities involving bank accounts linked to Trinamool Congress. US launches strikes against Iran after attacks on vessels in Strait of Hormuz, also revokes its sanctions relief on Iranian oil. And in football, Argentina and Switzerland enter quarterfinals of FIFA World Cup. India and Indonesia have strongly condemned terrorism in all its forms and called for decisive, coordinated international efforts to combat the threat in accordance with international law. In a joint statement issued after bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta, the two leaders urged action against globally proscribed terrorists and terrorist organizations, including those designated under the UN Security Council's 1267 Sanctions Committee. We have more from a correspondent.
5: The two leaders agreed to deepen cooperation in preventing and countering terrorism and violent extremism conducive to terrorism. The cooperation will include measures to curb terror financing, strengthen implementation of internationally agreed anti-money laundering, and countering the financing of terrorism standards, prevent the misuse of emerging technologies by terrorist groups, and tackle online radicalization and recruitment through digital platforms. Reaffirming a zero-tolerance approach to terrorism, the two sides pledged to continue disrupting terror financing networks and enhance bilateral and multilateral cooperation, including through the United Nations and the Financial Action Taken Force, FATF. Recognizing the links between terrorism and transnational organized crime, India and Indonesia agreed to strengthen information sharing and exchange of best practices in line with their domestic laws and international obligations. They also welcomed the early conclusion of Memorandum of Understanding on Counterterrorism Cooperation, which is expected to be signed soon. The two countries welcome the planned third India-Indonesia security dialogue as a platform to expand cooperation in counter-terrorism, transnational crime, cyber-security, emerging technologies, defense industry, maritime security and space. Both leaders also agreed to explore greater cooperation in the cyber domain through policy dialogue, capacity building and exchange of expertise and best practices. Shundipan Dashgupta, Akashvani News, Jakarta.
4: Prime Minister Narendra Modi has become the first Indian Prime Minister to address the Parliament of Indonesia. Addressing Indonesian lawmakers in Jakarta, Mr. Modi called for a new era in bilateral relations anchored in shared civilizational heritage, democratic values and a common vision for the future. Describing India as a mother of democracy, the Prime Minister said New Delhi is committed to strengthening democratic linkages with Indonesia.
6: भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और इंडोनेशिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। भारत में सैकड़ों भाषाएं और अनेक परंपराएं हैं, तो इंडोनेशिया में भी सैकड़ों भाषाएं और अनेक परंपराएं हैं। भारत में वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है, तो इंडोनेशिया में भिन्ने का तुंगल इक्का का विचार।
4: The Prime Minister noted that shared historical experiences, common developmental challenges, and the aspirations of the people have brought India and Indonesia closer as strategic partners. Highlighting India's development journey and the synergies between the vision of Viksit Bharat 2047 and Golden Indonesia 2045, Indonesia Emas 2045, PM Modi called for deeper collaboration in trade, investment, connectivity, food, and energy security. digital public infrastructure and emerging technologies.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, दिल से दिल की बात।
1: दोस्तों, सभा के इस भाग में लीजिए अब प्रस्तुत है ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम हेलो ईटानगर।
2: हेलो ईटानगर।

दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो टनागर कार्यक्रम में। आइए इस खूबसूरत कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत गीत के साथ। सुनते हैं पहला गीत आई हेट लव स्टोरी फिल्म से बिन तेरे। इस गीत को गाया है सफकात अमानत अली और सुनिधि चौहान ने।

जहाँ दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो ईटानगर। और दोस्तों, आज इस खास कार्यक्रम के तहत हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, और वो है सोशल मीडिया। 15-20 साल पहले जब युवा अपने फुर्सत के वक्त खेलकूद, पढ़ाई या परिवार के साथ बातें करने में बिताते थे, तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले समय में मोबाइल स्क्रीन हमारी दुनिया बन जाएगी। और आज वही हो रहा है। अधिकांश युवा अपना ज्यादा समय सोशल मीडिया एप्स पर ही बिता रहे हैं। अब सवाल ये है कि सोशल मीडिया का असर हमारी जिंदगी

सफ़र कैसा है। एक तरफ ही हमें दुनिया भर के लोगों से जोड़ने की ताकत देता है, तो दूसरी तरफ कुछ बड़े खतरे भी लेकर आता है। फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स ने जहां कम्युनिकेशन को आसान बना दिया है, वही मिस इन्फॉर्मेशन और अफवाहों का एक बड़ा जरिया भी बन गया है। सबसे पहला नुकसान हमें डिस्ट्रैक्शन का होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि सिर्फ 5 मिनट के लिए फ़ोन चेक कर लेंगे, लेकिन पता ही नहीं चलता और घंटे निकल जाते हैं और नतीजा पढ़ाई या काम की प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। यूट्यूब की वीडियोस, शॉपिंग साइट्स, मीम्स और रील्स हमें इतना खींच लेते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। ये एक तरह की आदत बन जाती है जो तोड़ना मुश्किल हो जाता है।

लेकिन सिर्फ डिस्ट्रैक्शन ही नहीं, मिस इन्फॉर्मेशन भी बड़ी समस्या है। फेक न्यूज़ और वायरल पोस्ट इतनी तेजी से फैलती है कि कभी कभी सच और झूठ अलग करना मुश्किल हो जाता है। इलेक्शन या किसी भी सामाजिक आंदोलन के दौरान ये और भी खतरनाक हो जाता है। इसीलिए ज़रूरी ये है कि हम हमेशा रिलायबल सोर्सेज पर भरोसा करें और फैक्ट चेकिंग को अपनी आदत बनाएं। साथ ही सोशल मीडिया एक और खतरा लेकर आता है, प्राइवेसी और डाटा रिस्क का। अक्सर लोग बिना सोचे अपना फ़ोन नंबर, एड्रेस या पर्सनल डिटेल्स शेयर कर देते हैं। ये डिटेल्स स्कैम्स और हैकिंग के लिए रास्ता बन जाती है। इसीलिए हमें अपना अकाउंट सेटिंग्स को सिक्योर रखना चाहिए और पर्सनल जानकारी सिर्फ ट्रस्टेड लोगों के साथ ही बांटनी चाहिए। और अब आइए बात करते हैं कि ऐसे पहलों के रिलेशनशिप्स सोशल मीडिया पर बने नए कनेक्शंस कभी कभी सिर्फ ऊपर ऊपर के होते हैं। लाइक्स और कमेंट्स की दुनिया में असली जज्बात गुम हो जाती है। इसी वजह से लोनलीनेस, कंपैरिजन और लो सेल्फ स्टीम भी बढ़ने लगता है। लेकिन अगर हम चाहें तो वर्चुअल इंटरेक्शंस को मीनिंगफुल बना सकते हैं। बस शर्त यह है कि हम असली संवेदना, एम्पैथी और समय देने पर जोर दें।

और दोस्तों, सबसे बड़ा खतरा है एडिक्शन का। हर नोटिफिकेशन एक डोपामाइन फीडबैक लूप शुरू कर देता है। नया पोस्ट देखते ही एक्साइटमेंट बढ़ जाता है और हम बार बार फोन चेक करते हैं। धीरे धीरे ये एक छोटी सी आदत से बढ़कर एडिक्शन में बदल जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सब्सटेंस यूज का नशा। पर दोस्तों, खुशखबरी ये है कि इसका हल भी हमारे पास है। अगर हम कुछ ऐप्स की नोटिफिकेशंस बंद कर दें, फोन फ्री आवर्स बनाएं या कुछ ऐप्स अनइंस्टॉल कर दें, तो इस आदत पर काबू पाया जा सकता है। साथ ही कुछ हॉबीज, स्पोर्ट्स और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम हमारे लिए एक नई एनर्जी लेकर आता है। ये सभी एक्टिविटीज हमें सोशल मीडिया से बेहतर तरीके से दूर रखने में हमें मदद करता है।

तो दोस्तों, सोशल मीडिया एक शक्तिशाली टूल है। अगर हम इसे सूझबूझ के साथ इस्तेमाल करें, ये एक पॉजिटिव चेंज का जरिया बन सकता है। लेकिन अगर हम बेपरवाह हो गए तो ये हमें डिस्ट्रैक्शन, मिस इन्फॉर्मेशन और एडिक्शन के जाल में फंसा देगा। बस फर्क ये है कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सोशल मीडिया को समझदारी से इस्तेमाल करें और इसे अपने जीवन को सुधारने का साधन बनाएं, ना कि बिगड़ने का कारण।

0: दोस्तों कार्यक्रम में लौटेंगे एक और खूबसूरत गीत के साथ, लेकिन लेते हैं उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
1: पारे हाइड्रो पावर स्टेशन इज करेंटली इन ऑपरेशन। Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all

दोस्तों, हेलो ईटानगर कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबायो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया।
1: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे बड़े मंदिर हैं। भारत और इंडोनेशिया ने प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए कल एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की। प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों में छापेमारी की। छापेमारी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों तथा एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों की गई। मामले की जांच जारी है। अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका की केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि होर्मुज में ईरान द्वारा निर्दोष नागरिकों द्वारा संचालित वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अमरीका के ये हमले समझौते का उल्लंघन है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्विट्जरलैंड कोलंबिया को हराकर 1954 के बाद पहली बार विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। वहीं राउंड ऑफ 16 के अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। India and Indonesia have strongly condemned terrorism in all its forms and called for decisive, coordinated international efforts to combat the threat in accordance with international law. In a joint statement issued after bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta, the two leaders urged action against globally proscribed terrorists and terrorist organizations, including those designated under the UN Security Council's 1267 Sanctions Committee. Prime Minister Narendra Modi has become the first Indian Prime Minister to address the Parliament of Indonesia. Addressing Indonesian lawmakers in Jakarta, Mr. Modi called for a new era in bilateral relations anchored in shared civilizational heritage, democratic values, and a common vision for the future. Describing India as the mother of democracy, the Prime Minister said New Delhi is committed to strengthening democratic linkages with Indonesia.
1: भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और इंडोनेशिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। भारत में सैकड़ों भाषाएं और अनेक परंपराएं हैं, तो इंडोनेशिया में भी सैकड़ों भाषाएं और अनेक परंपराएं हैं। भारत में वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है, तो इंडोनेशिया में भिन्ने का तुंगल इक्का का विचार।
2: Prime Minister Modi will visit the iconic Prambanan Temple in Yogyakarta along with Indonesian President today. The visit underscores the deep cultural and civilizational ties that have connected India and Indonesia for over 1,000 years. Built in the 9th century, Prambanan is Indonesia's largest Hindu temple complex and one of Southeast Asia's finest architectural masterpieces. In the second leg of his three-nation tour, Prime Minister Modi will reach Melbourne today on a three-day visit, where he will participate in the third India-Australia annual summit with Australian Prime Minister Anthony Albanese. Mr. Modi will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both the countries. The Prime Minister's office held a high-level review meeting to review possible impact of El Nino on various sectors and preparedness measures. The meeting was held under the chairmanship of Principal Secretary to Prime Minister Dr. P.K. Mishra at Seva Tirth yesterday. Secretaries and senior officials of more than 15 ministries were present at the meeting. Mr. Mishra directed that the overall situation should be continuously monitored and the impact of the monsoon or delayed monsoon on vulnerable districts must be assessed in coordination with states so that remedial action can be taken up when necessary. The Enforcement Directorate (ED) conducted searches at 5 premises in and around Kolkata in connection with alleged dishonest financial dealings, unlawful collection of money and routing of suspected funds through certain bank accounts of the All India Trinamool Congress. The searches are being carried out at premises linked to the private firm Carewell Group of Companies operating in the aviation sector, its directors and one purported electoral trust. The India Meteorological Department IMD informed that conditions are favorable for southwest monsoon to further advance into the remaining parts of North Arabian Sea, Rajasthan, Haryana and Punjab during next 2 to 3 days. The Met Department forecast very heavy rainfall today over sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Maharashtra, coastal Karnataka, East Rajasthan, Gujarat, Konkan and Goa and South Interior Karnataka. The U.S. military has launched new strikes against Iran hours after 3 merchant ships were struck in the Strait of Hormuz. In a statement, U.S. Central Command said that American forces have launched strikes to impose heavy costs for targeting and attacking commercial shipping crewed by innocent civilians in an international waterway. In football, Switzerland beat Colombia 4-3 in a penalty shootout in Vancouver to reach the quarterfinals of FIFA World Cup for the first time since 1954. In another round of 16 match, Argentina defeated Egypt 3-2 in Atlanta. With this win, Argentina entered the quarterfinals of the tournament. In men's cricket, England defeated India by 125 runs in the third T20 international at Trent Bridge in Nottingham last night. And that is the end of this news bulletin.
3: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी टानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

दोस्तों, अब आप सुन पाएंगे हमारा अगला कार्यक्रम फिल्में गपसप, जहां हम आपको देते हैं सिनेमा की दुनिया की ताज़ा खबरें, ओटीटी रिलीज अपडेट्स, कुछ बॉलीवुड ट्रेंडिंग न्यूज़ और साथ ही सुनाएंगे कुछ बॉलीवुड ट्रैक्स। तो दोस्तों, फिल्म में गपशप कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत गीत के साथ और थोड़ा मूड सेट कर लेते हैं फिल्म में गपशप कार्यक्रम के आगे के सफर के लिए। और पहला गीत आप सुन पाएंगे दिल मांगे मोर फिल्म से गुस्ताख दिल। इस गीत को गाया है सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने।

जी हाँ दोस्तों, अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं फिल्मी गपशप कार्यक्रम। तो आइए बिना किसी देर के आप शुरू करते हैं आज का ये सेगमेंट। और दोस्तों, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा चर्चा में रही है अल्फा वायरफ स्पाई यूनिवर्स की। ये पहली वुमेन लीड स्पाई फिल्म है जिसमें आलिया भट्ट और शर्वरी लीड रोल्स में नजर आ रहे हैं। स्पाई यूनिवर्स को एक नए डायरेक्शन देने की ये कोशिश काफी इंटरेस्टिंग है। और सबसे पहले तो यशराज फिल्म्स की तारीफ बनती है कि उन्होंने सिर्फ मेल सुपर स्पाइस तक अपने फ्रेंचाइज को सीमित नहीं रखा बल्कि फीमेल एजेंट्स को भी सेंटर स्टेज दिया। हिंदी सिनेमा में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स वाकई वेलकम किए जाने चाहिए। और इस अगर फिल्म की बारे में थोड़ा बताऊं तो फिल्म की कहानी दो इलीट एजेंट्स के एक हाई रिस्क मिशन के इर्द गिर्द घूमती है। आलिया भट्ट और शर्वरी ने अपने कैरेक्टर्स को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ निभाया है। दोनों के एक्शन सीक्वेंसेस, हैंड टू हैंड कम्बैट और इमोशनल मोमेंट्स ऑडियंस को काफी पसंद आ रही है। वही बॉबी डियोल अपने नेगेटिव रोल में एक बार फिर दमदार स्क्रीन प्रेजेंस दिखाते नजर आ रहे हैं। फिल्म का एक और बड़ा हाईलाइट है ऋतिक रोशन का कबीर के रूप में कैमियो। उनकी एंट्री छोटी जरूर है लेकिन इम्पैक्ट काफी बड़ा छोड़ देती है। थिएटर्स में उनकी एंट्री पर सीटियां और तालियां इस बात का सबूत है कि कबीर का कैरेक्टर आज भी ऑडियंस का फेवरेट है। ये कैमियो सिर्फ एक्साइटमेंट ही नहीं बढ़ाता बल्कि वायरफ स्पाई यूनिवर्स के आने वाले चैप्टर्स के लिए भी फैंस की क्यूरियोसिटी और बढ़ा देते हैं। फिल्म की रिव्यू की बात करें तो फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस, ग्रैंड विजुअल्स और परफॉर्मेंसेस की काफी तारीफ हो रही है लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले को लेकर रिएक्शंस मिक्स्ड आ रही है। कई रिव्यूअर्स का कहना है कि फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो लगता है और स्टोरी में वो फ्रेशनेस नहीं मिलती जिसकी उम्मीद की जा रही थी, मगर सेकेंड हाफ में एक्शन और फेस दोनों बेहतर हो जाते हैं जिसकी वजह से फिल्म ज्यादा एंगेजिंग बन जाती है। और इसी बीच सोशल मीडिया पर फिल्म की तुलना धुरंधर से भी की जा रही है। कई मूवी लवर्स का मानना है कि धुरंधर ने अपनी ग्रिपिंग स्टोरी टेलिंग, टाइट स्क्रीन प्ले और रियलिस्टिक स्पाई एक्शन के साथ स्पाई जॉनरा के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर दी है। उसी कंपैरिजन में कुछ व्यूअर्स को लगता है कि अल्फा एक्शन और स्टाइल में तो इम्प्रेस करती है लेकिन राइटिंग और थ्रिल के मामले में थोड़ी पीछे रह जाती है। फिर भी दोस्तों, एक बात तो साफ है, वायरफ का वुमेन लीड स्पाई फिल्म बनाने का फैसला एक पॉजिटिव और बोल्ड कदम है। अगर ऑडियंस इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स को सपोर्ट करती है तो आने वाले सालों में हमें और भी दमदार फीमेल स्पाई कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको स्टाइलिश एक्शन, बड़ी स्केल का एंटरटेनमेंट और स्पाई यूनिवर्स के फैन हैं आप तो अल्फा एक बार थिएटर्स में जरूर देखी जा सकती है। और ऋतिक रोशन के कैमियो के लिए थोड़ा इंतजार जरूर कीजिएगा क्योंकि वो पल फैंस के लिए पूरी तरह पैसा वसूल साबित होता है।

और दोस्तों जहां एक तरफ पूरी इंडस्ट्री की नजरें अल्फा पर टिकी हुई थी, वहीं उसी दिन रिलीज हुई एक और फिल्म ने धीरे धीरे ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। मैं बात कर रही हूँ बेबी डू डाई डू फिल्म की। डायरेक्टर नचिकेत सम्मत के इस क्राइम थ्रिलर में हुमा कुरैशी लीड रोल्स में है। उनके साथ सिकंदर खेर, चंकी पांडे, सीमा पवार और विद्या मालवड़ी भी अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं।

डिनर्स ही नहीं बल्कि एक ग्रिपिंग कंटेंट ड्रिवन थ्रिलर देखना पसंद करते हैं तो बेबी डू डाई डू आप जरूर देखने जा सकते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा सरप्राइज वही फिल्म बन जाती है जिससे सबसे कम उम्मीदें की जाती है।

दोस्तों लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक और सुनते हैं कल हो ना हो फिल्म का प्रीति वुमन। इस गीत को गाया है शंकर महादेवन रबी राग खोते ने।

Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन

0: ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: जो है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz और इस वक्त आप बने हुए हमारे साथ कार्यक्रम फिल्मी गपशप में। और दोस्तों, अब बात करते हैं उन फिल्मों की जो इस हफ्ते एंटरटेनमेंट का लेवल और भी हाई करने आ रही है। एक तरफ है हंसी का धमाका और दूसरी तरफ है कोर्ट रूम का जबरदस्त ड्रामा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं धमाल 4 की। धमाल फ्रेंचाइज का नाम सुनते ही याद आ जाती है वो क्रेजी कॉमेडी, अजीबो गरीब सिचुएशंस और पेट पकड़कर हंसने वाली मोमेंट्स। और अब ये आइकॉनिक गैंग एक बार फिर वापस आई गई है। इस बार फिल्म में नजर आएंगे अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वर्सी, जावेद जाफरी, रवि किशन, संजय मिश्रा, ऐशा गुप्ता और संजीदा शेख। इस बार कहानी एक नए ट्रेजर हंट के इर्द गिर्द घूमती है जहाँ हर कोई खजाना तक पहुँचना चाहते हैं, लेकिन रास्ते में जो कन्फ्यूजन, कॉमेडी और कियोस मचाता है वही इस फिल्म की जान है। यह फिल्म 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप फैमिली के साथ एक स्ट्रेस फ्री एंटरटेनर देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आप वीकेंड पर जरूर देखने चाहिएगा। और अब बात करते हैं एक बिल्कुल अलग जोनरा की। अगर कॉमेडी से सीधा सीरियस कोर्टरूम ड्रामा की तरफ जाना चाहते हैं तो इक्का इस हफ्ते रिलीज होने जा रही है। फिल्म में सनी देओल, अक्षय खन्ना और तिलोत्तमा सोम लीड रोल्स में नजर आ रहे हैं। खास बात इस फिल्म की ये है कि सनी देओल और अक्षय खन्ना लगभग 3 दशक बाद एक साथ स्क्रीन शेयर करने वाली है। ये फिल्म एक कोर्टरूम थ्रिलर है जहां सिर्फ केस ही नहीं बल्कि हर डायलॉग और हर आर्ग्यूमेंट्स ऑडियंस को एंगेज करने वाली है। इक्का भी 10 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी। तो इस हफ्ते अगर आपका मूड है हंसने का तो धमाल 4 देखिएगा, और अगर देखना चाहते हैं एक इंटेंस कोर्टरूम बैटल तो इक्का आपके लिए परफेक्ट हो सकती है।

इसी के साथ दोस्तों आइए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं ओम शांति ओम फिल्म का दीवान दी गाना। इस गीत को आवाज दी है शान, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सुनीति चौहान और राहुल सक्सेना ने।

दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया से लेकर एंटरटेनमेंट सर्कल्स तक एक ही फिल्म की काफी चर्चा हो रही है और वो है सतलज, जिसमें सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ लीड रोल में नजर आ रहे हैं। ये फिल्म असल में पहले पंजाब 95 के नाम से बनाई गई थी और उससे भी पहले इसका वर्किंग टाइटल घल्लू घारा था। फिल्म की कहानी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालरा की जिंदगी से प्रेरित बताई जाती है। खालरा ने 1990s के पंजाब में एलिजिड इलीगल किलिंग्स और अनक्लेम क्रिमिसेंस का मुद्दा उठाया था, जिसकी वजह से उनका नाम इतिहास में एक बहादुर विसल ब्लोअर के रूप में याद की जाती है। फिल्म का सफर शुरू से ही आसान नहीं रहा। कई सालों तक सर्टिफिकेशन और सेंसरशिप से जुड़ी परेशानियों के चलते इसका थिएटिकल रिलीज डिले होता रहा। आखिरकार इसे G5 पर बिना ज्यादा प्रमोशन के रिलीज किया गया, लेकिन कंट्रोवर्सी तब और बढ़ गई जब रिलीज के सिर्फ कुछ ही दिन बाद फिल्म को इंडिया में ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। सरकार ने इसके पीछे नेशनल सिक्योरिटी और आईटी रूल्स 2021 के तहत एक्शन लेने की बात कही। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर सेंसरशिप, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और हिस्टोरिकल नैरेटिव्स को लेकर बहस और तेज हो गई है। दिलजीत दोसांझ ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि फिल्म को मुश्किलें आ सकती है। वही कई पब्लिक फिगर्स ने फिल्म को देखने लायक बताया, जबकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इस रिमूवल की आलोचना की। कुल मिलाकर दोस्तों, सतलज सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि इस वक्त सेंसरशिप, हिस्ट्री और क्रिएटिव फ्रीडम को लेकर चल रही नेशनल डिबेट का हिस्सा बन चुकी है। फिल्म को लेकर लोगों की राय अलग-अलग हो सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि इस फिल्म ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ जरूर खींच लिया है। फिल्मी गपशप पर सुनते हैं अगला गाना। मैं सिर्फ तेरा महबूब इस गीत को गाया है अदन शामी और सुनिधि चौहान ने। फिल्म है अजनबी।

0: दूसरे इसी के साथ ही फिल्म मेकअप सब कार्यक्रम का ये सफर यही समाप्त होते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब वक्त हो चला है देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों का, जिसे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तो शाम लौटेंगे 10:10 पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड के साथ। तो कहीं जाएगा नहीं और सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबायो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध

0: मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया।
1: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे बड़े मंदिर हैं। भारत और इंडोनेशिया ने प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए कल एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की। प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धैर्य किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि ये देश को सबसे कठिन चुनौतियों के बीच भी एकजुट रहने की प्रेरणा देता है। संस्कृत का एक प्रेरक कथन साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि धैर्य किसी राष्ट्र को निरंतर प्रगति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों में छापेमारी की। छापेमारी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। मामले की जांच जारी है। घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ खुले। सेंसेक्स 364 अंक गिरकर 77,816 पर, जबकि निफ्टी 139 अंक लुढ़ककर 24,260 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. India and Indonesia have strongly condemned terrorism in all its forms and called for decisive, coordinated international efforts to combat the threat in accordance with international law. In a joint statement issued after bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta, the two leaders urged action against globally proscribed terrorists and terrorist organizations, including those designated under the UN Security Council's 1267 Sanctions Committee. Prime Minister Narendra Modi has become the first Indian Prime Minister to address the Parliament of Indonesia, addressing Indonesian lawmakers in Jakarta. Mr. Modi called for a new era in bilateral relations, anchored in shared civilizational heritage, democratic values, and a common vision for the future. Describing India as the mother of democracy, the Prime Minister said, New Delhi is committed to strengthening democratic linkages with Indonesia.
1: भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और इंडो

0: दोस्तों, सुबह के 10:10 हो चुके हैं। अब पेश है आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड।
1: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर। जी हाँ दोस्तों।

0: SMS के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके SMS का इंतजार रहेगा।
1: नमस्कार प्यारे श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz और मैं हूं आपके रेडियो साथी RJ दुनिया। आप सभी का स्वागत है रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम में। और दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे, स्वस्थ और खुश होंगे और आज की सुबह एक अच्छी चाय या कॉफी के साथ बहुत ही अच्छी शुरू हुई होगी। अब इस शुभकामना के साथ कि आपका आज का दिन खुशियों और सफलताओं से भरी हो, चलिए शुरू करते हैं रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम, जहां सिर्फ वही गाने प्ले की जाएगी जो आप हमें इतने सारे गानों में से चुनकर रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो अब से लेकर 11 बजे तक यानी पूरे 50 मिनट सिर्फ और सिर्फ आप सभी श्रोताओं के नाम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम और सबसे पहला मैसेज हमें आया है बोखाखात आसाम से हर्षित गोस्वामी जी का। हर्षित जी को सुनना है जले हुए फिल्म का पल सॉन्ग। इस गीत को गाया है श्रेया घोषाल ने। तो हर्षित जी, आपके पसंदीदा गीत के साथ हम आज का रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं।

दोस्तों, रेडियो ऑन डिमांड में अगला मैसेज हमें आया है हिगी बागरा से, हमारी रेगुलर लिसनर गोमे माई बागरा जी का। और उन्होंने मैसेज में लिखा है कि पिछले एक दो दिन से दिन के तेज धूप के कारण बीमार हो गई, इस वजह से वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। गोमे माई जी, सबसे पहले हमें आपकी कमी रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम में जरूर महसूस हुई और उम्मीद करती हूँ आपकी तबीयत पहले से काफी बेहतर होगी। हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, धूप से बचकर रहिए और पूरा आराम जरूर कीजिएगा। आपकी फुल रिकवरी के लिए हम और हमारे श्रोताओं जरूर प्रे करेंगे। और हमें बहुत खुशी हुई आज फिर एक बार आज आप हमारे साथ रेडियो डिमांड कार्यक्रम पर जुड़ी है। तो चलिए आपकी फरमाइश पर सुनते हैं दिल तुझको दिया फिल्म से वादा ना तोड़ तू। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

0: attention. Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: दोस्तों, छोटे से अंतराल के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात, और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम। दोस्तों, अगला रिक्वेस्ट हमें आया है गोलाघाट आसाम से रोमिस पात्रो, रुनु पात्रो और लकी जी का। उन्हें सुनना है राम बलराम फिल्म का अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, और साथ ही उन्होंने इसकी गीत को डेडिकेट किया है अमल बिमोल बाईकॉम हितेंद्र देवाशीष जोगेंद्र और सोनाली जी को। बता दूं, इस गीत को गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए सुनते हैं आप सबका पसंदीदा गाना।

दोस्तों, रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम का अगला गाना आप सुन पाएंगे खिलौना फिल्म से अलका याग्निक की आवाज में। हम जानते हैं तुम हमें इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है सोनितपुर आसाम से मैनाव बसुमतारी जी ने, और उन्होंने इस गीत को अपने कुछ दोस्तों को डेडिकेट किया है। उनके दोस्तों का नाम है विमल बसुमतारी, कल्पना बसुमतारी, देरासर बसुमतारी, अंजलि बसुमतारी, बाइको मुंडा, रूपाली मुंडा, रोमेश पात्रो, रोनू पात्रो, जोगेंद्र रोंगपी, सोनाली इंगदीपी, हितेंद्र दास।

सोंधिया रानी गोगोई और अमल अमल बसुमतारी। उम्मीद है आप सब दोस्त इस वक्त हमें सुन रहे होंगे। हम प्ले कर रहे हैं आप सबको पसंदीदा गाना, सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज में, हम जानते हैं तुम हमें।

दस्तावेज़ हैं रेडियो डिमांड के अगले फरमाइश की ओर जो हमें आया है गोपुर असम से सानू प्रधान जी का। उन्होंने रिक्वेस्ट करी है बैरन सॉन्ग। बैरन सॉन्ग एक एल्बम सॉन्ग है जिसे गाया है अनुज और सुमित ने। सानू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए सुनते हैं आपको पसंद का गाना।

प्यारे श्रोताओं, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का और उन FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस वक्त आप सुन रहे हैं आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। तो सर, रेडियो ऑन डिमांड की अगली फरमाइश समय आया है हलम आसाम से हमारी प्यारी श्रोता ज्योति सोरेन जी का। उन्हें सुनना है तारा रमपम फम का है सोना। इस गीत को गाया है शान और सुनिधि चौहान ने।

दोस्तों, अगला रेडियो ऑन डिमांड रिक्वेस्ट हमें आया है असम से हितेंद्र दास जी का। हितेंद्र जी को सुनना है आनंद फिल्म का कहीं दूर जब दिन ढल जाए, जिसे गाया है मुकेश ने और इस गीत को उन्होंने डेडिकेट किया है दुर्गेश नागनपुर, देवाशीष हजरिका, रेकोनविल मेहता, नारायण प्रधान, शिवा गोप, मिनल अहमद, अंकित यादव, विक्रम दास और सुमन दास जी को। तो चलिए आप सबके फरमाइश पर सुनते हैं कहीं दूर जब दिन ढल जाए मुकेश की आवाज में।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही हम आज के रेडियो डिमांड कार्यक्रम के समापन पर आप पहुंचे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबके पसंदीदा गीतों के साथ हमने आप सबका भरपूर मनोरंजन किए होंगे। हम कल भी इसी समय आप सबके पसंदीदा गीतों के साथ लौटेंगे सुबह के 10:10 पर। दोस्तों बता दो, अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 11 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। साथ ही बता दो दोस्तों, इसी के साथ ही हम आज के पहले प्रसारण सभा के समापन पर आप पहुंचे हैं। उम्मीद करती हूँ इस सभा में प्रसारित सभी कार्यक्रम आपको रोजाना की तरह बेहद पसंद आए होंगे। इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ थे स्टूडियो तथा अजमेर में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक दीतांजंग तथा तकनीकी अभियंता दी नियोग। दोस्तों, इसी तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा में सुबह के 11:10 से लेकर शाम के 4:20 तक और दूसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाएंगे आपके अपनी आरजे कविता। तो दोस्तों, आप मुझे यानी आपके रेडियो साथी आरजे दुनिया को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: कार्रवाई करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया।
1: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता में प्रांबानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रांबानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे बड़े मंदिर हैं। भारत और इंडोनेशिया ने प्रांबानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए कल एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की। प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अलनीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों में छापेमारी की। छापेमारी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। मामले की जांच जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत भारत की मानवीय सहायता को स्वीकार करने के लिए वेनेजुएला का धन्यवाद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जायसवाल ने कहा कि ये राहत अभियान दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता को दर्शाता है। भारत ने विनाशकारी दोहरे भूकंपों के बाद वेनेजुएला की मदद के लिए ऑपरेशन अमिस्तात शुरू किया था। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। गुजरात क्षेत्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में गरज के साथ आंधी की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई। केरला में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है, हालांकि जिलों में येलो अलर्ट जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धैर्य किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि ये देश को सबसे कठिन चुनौतियों के बीच भी एकजुट रहने की प्रेरणा देता है। संस्कृत का एक प्रेरक कथन साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि धैर्य किसी राष्ट्र को निरंतर प्रगति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप श्रोता सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हिंदी और इंग्लिश न्यूज। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। श्रोताओं, उम्मीद करती हूं आज आपने पहली प्रसारण में काफी एंजॉय किया होगा और आगे के प्रसारण में आपके साथ है प्रसारण अधिकारी पंचानंद डोले, तकनीकी अभियंता अमित कुमार सक्सेना और स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सभी सहकर्मी, और मैं आपकी रेडियो साथी कविता हूं। अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे प्रोग्राम फिल्मी लहर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, कोशिश करते रहिए जब तक कि आपको सफलता नहीं मिलती। और इसी के साथ ही आइए शुरू करते हैं हमारा आज का फिल्मी लहर प्रोग्राम। जी हाँ, आज इस प्रोग्राम में आप पहला गाना सुनने जा रहे हैं श्रेया घोषाल की आवाज में, जलेबी फिल्म से।

राजू बन गया जेंटलमैन फिल्म का ये गाना आप सुन रहे हैं अलका याग्निक एवं उदित नारायण की आवाज में। आप श्रोता हमारे साथ सुन रहे हैं प्रोग्राम फिल्मी लहर।

0: करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: अपने जिंदगी के किसी भी दिन को मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है और बुरा दिन अनुभव एक सफल जिंदगी के लिए दोनों ही जरूरी है दोस्तों। तो आइए अब सुनते हैं तोची रायना श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म शोर इन द सिटी का ये गाना।

0: आप सुन रहे थे प्रोग्राम ऑफ वेस्टर्न मेलोडीज। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में। और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और इंग्लिश न्यूज।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांबानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
1: प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि शोपिया के चानापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव भी बरामद हुआ है और उसकी पहचान की जा रही है। केरलम सरकार ने वाइडनास भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की दो टीमें अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है।

0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। गुजरात क्षेत्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में गरज के साथ आंधी की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। केरल में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है, हालांकि जिले में येलो अलर्ट जारी है। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाजरोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि बंदर अब्बास, केशम और सिरिक में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today visited the UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta, along with Indonesian President Prabowo Subianto. The Prime Minister was accorded a traditional welcome with the resonant notes of gamelan ensemble and a classical Yogyakarta dance performance reflecting Indonesia's rich cultural heritage. The two leaders toured the 9th century temple complex where Prime Minister Modi offered prayers at the main Shiva temple. They also viewed the temple's intricate carvings before witnessing the ongoing conservation efforts being supported through India-Indonesia cooperation. Addressing a gathering at the Prambanan temple in Yogyakarta in Indonesia, the Prime Minister said he was born in Vadnagar, home to Hathkeshwar Mahadev, and that the Somnath Jyotirling in Gujarat, the first among the 12 Jyotirlingas, holds special significance, with him having direct responsibility for its development.
2: यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं, ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
1: India and Indonesia have strongly condemned terrorism in all its forms and called for decisive, coordinated international efforts to combat the threat in accordance with international law. In a joint statement issued after bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta, the two leaders urged action against globally proscribed terrorists and terrorist organizations, including those designated under the UN Security Council's 1267 Sanctions Committee. In the second leg of his three-nation tour, Prime Minister Modi will reach Melbourne today on a three-day visit where he will participate in the third India-Australia Annual Summit with the Australian Prime Minister Anthony Albanese. Mr. Modi will also participate in the India-Australia CEOs Forum where he will address a gathering of top business leaders from both the countries. He will also address a large gathering of the Indian diaspora who constitute a strong pillar of the India-Australia relationship. The bilateral discussions between Prime Minister Modi and his Australian counterpart, the Honourable Anthony Albanese, are set to advance cooperation across several key domains. In Jammu and Kashmir, police today said that one terrorist has been killed in an encounter with security forces in Chanapora area of Shopian. Police said that the operation was conducted jointly with Army and the CRPF. Talking to Akashwani News, Inspector General of Police V.K. Birde said a body has been found with arms and ammunition at the spot and the identity is being ascertained. Union Home Minister Amit Shah today spoke to Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis regarding the heavy rainfall and flood-like situation in the state. During the conversation, Mr. Shah assured the Chief Minister of all possible assistance from the central government to support the Maharashtra government in dealing with the situation. The Prime Minister's Office PMO held a high-level review meeting to review the possible impact of El Nino on various sectors and the preparedness measures. The meeting was held under the chairmanship of Principal Secretary to Prime Minister Dr. P.K. Mishra at the Seva Theatre yesterday. Secretaries and senior officials of more than 15 ministries were present at the meeting. Dr. Mishra directed that the overall situation should be continuously monitored and the impact of monsoon or delayed monsoon on vulnerable districts must be assessed in coordination with states. The U.S. has carried out a fresh round of airstrikes on Iran, targeting more than 80 locations in response to Iran's latest attacks on commercial ships passing through the Strait of Hormuz. According to U.S. Central Command, the strikes targeted Iranian air defense systems, command and control centers, coastal radar sites, anti-ship missile systems, and more than 60 Islamic Revolutionary Guard Corps fast boats in and around the Strait of Hormuz. Iran's Central Military Command warned that it would respond decisively to what it called an act of aggression and terrorism. In football, Switzerland beat Colombia 4-3 in a penalty shootout in Vancouver to reach the quarterfinals of FIFA World Cup for the first time since 1954. And that is the end of this news bulletin.
3: आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और इंग्लिश न्यूज. आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में, जहां होती है दिल से दिल की बात. और अब समय है हमारे प्रोग्राम नॉन हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स का. जी हां, इस प्रोग्राम में आप सुन पाएंगे अनूप जैन के गाए कुछ गाने. जी हां, अनूप जैन गायक, गीतकार और संगीतकार हैं. वे अपने सरल और लयबद्ध गीतों के लिए जाने जाते हैं, जिनके बोल मुख्य रूप से प्रेम और दिल टूटने से जुड़े हुए हैं. सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा स्ट्रीम किए जाने वाले भारतीय इंडी कलाकारों में से गिने जाने वाले अनूप के कुछ जो पॉपुलर नंबर से काम है वो है बारिश, अलग आसमा, गुल, हुस्न और जो तुम मेरे हो. हुस्न और जो तुम मेरे हो एप्पल म्यूजिक इंडिया और स्पॉटिफाई इंडिया के सभी सेलियों के चार्ट में नंबर वन पर रहे. हुस्न सभी संगीत स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के साल के अंत के चार्ट में 2024 में सबसे ज्यादा स्ट्रीम किए जाने वाले भारतीय गानों में से शामिल है. आइए सुनते हैं अनूप जैन के गाए कुछ गाने.

Attention! Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करे और ना ही उसमें धोने जाए।

शुरू किया। उनका पहला रिकॉर्ड किया गया गीत बारिशें था, जो एक स्लीपर हिट साबित हुआ। एक जो इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्होंने ये गाना जो है 17 साल की उम्र में उस लड़की के लिए लिखा था जिससे उन्हें प्यार था। बारिशें स्पॉटिफाई पर 100 और 200 मिलियन स्ट्रीम को पार करने वाला उनका पहला गाना बन गया। रोलिंग स्टोन इंडिया के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वह वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरणा लेते हैं और महीनों की जो है इंटरवल्स में वो गाना लिखते हैं।

दोस्तों, आप हमारे साथ सुन रहे हैं नॉन हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स और आज इस प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं अनूप जैन के गाए गाने। कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने म्यूजिक को कैरियर के रूप में अपनाने का फैसला किया। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने कई गाने रिलीज किए जिनमें अलग आसमां और गुल हिट हुए। उन्होंने देश भर में और यूके, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, नेपाल और अन्य सहित अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर लाइव शोज किए। आइए सुनते हैं उनका गाया ये गाना गुल।

无可丰富等候佛猫地无可个这能地够不灭宣漏无主汉佛人

孟欢怀两旁北马风潮跟风烟马弄心间人口面面比拉低大西孟欢开个街。

0: 后行为恩，当日门肯的英国来横，东西没谋装，喇嘛冲包慌慌帮助包。
1: आप श्रोता सुन रहे थे नॉर्थ ईस्ट परिचय। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज में, और अब से थोड़ी ही देर में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और इंग्लिश न्यूज।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण
2: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इंडोनेशिया के योग्यकार्ता स्थित प्रामानन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
3: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
2: प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि संयुक्त समिति ने उप समितियों को उनके संबंधित कार्यक्षेत्र के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन दिया और उनसे लंबित मुद्दों को शीघ्र अंतिम रूप देने को कहा है। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता मजबूत होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा ओडिशा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल ओडिशा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चानापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक बीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की दो टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। इस बीच केरलम में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर राजस्थान हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र सिक्किम महाराष्ट्र तटीय कर्नाटक पूर्वी राजस्थान गुजरात कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

दोस्तों आइए सुनते हैं हिंदी क्लासिक म्यूजिक का ये प्रोग्राम जिसमें हम लेकर आते हैं 60 से लेके 80 के दशक तक के कुछ उम्दा गाने। तो आइए सुनते हैं कभी कभी फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर एवं किशोर कुमार की आवाजों में।

0: Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: श्रोता दोस्तों, आप हमारे साथ सुन रहे हैं प्रोग्राम हिंदी क्लासिक म्यूजिक का, और आइए अब सुनते हैं कल आज और कल फिल्म का ये गाना किशोर कुमार की आवाज में।

उनकी जुल्फे उनके चेहरे से हटा सकता नहीं, उनकी जुल्फे उनके चेहरे से हटा सकता नहीं, दिल की बेताबी किसी सूरत छुपा सकता नहीं। कितनी दिलकश है मोहब्बत की जवा मजबूरियां, सामने मंजिल है और पांव बढ़ा सकता नहीं। जी हाँ, ये कितनी ही खूबसूरत बेबसी है एक आशिक की। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में कन्यादान फिल्म का ये गाना।

छुपा सकता नहीं कितनी दिलकश है मोहब्बत की जवान

कटी पटंग से। जी हाँ, ये फिल्म जो है राजेश खन्ना की, मानी जाती है कि ये लगातार 17 हिट फिल्मों में से एक है उनकी ये फिल्म, और 4 फिल्मों में से दूसरी है जिसमें उनकी आशा के साथ ये जोड़ी बनाई गई थी। और साथ ही इस फिल्म में आशा पारेख ने जीता था बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। तो इसी फिल्म का आइए सुनते हैं ये गाना किशोर कुमार के आवाज में।

श्रोता दोस्तों, इसी गाने के साथ ही प्रोग्राम हिंदी क्लासिक म्यूजिक से हम चाहते हैं इजाजत। बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz में।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता दोस्तों, आइए सुनते हैं हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स का ये प्रोग्राम। इसमें आइए सुनते हैं पहला सॉन्ग जुबिन नौटियाल की आवाज में, फिल्म काबिल से।

अरिजीत सिंह एवं निहिता गांधी की आवाज में आपने सुना केदारनाथ फिल्म का ये गाना। आइए अब सुनते हैं कुमार सानू एवं कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में खूबसूरत फिल्म का ये गाना।

0: Ministerial meeting begins in Kochi to strengthen cooperation on women's empowerment and sustainable development. Union Home Minister Amit Shah speaks to chief ministers of flood-affected states and assures all possible assistance from the centre. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms over central and eastern parts of the country. Iran targets American military sites in Bahrain and Kuwait after a wave of US strikes. Global oil prices jump over 2%. And Switzerland beat Colombia 4-3 in penalty shootout to set up quarterfinals against Argentina in FIFA World Cup. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रामानंद मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में 2% से अधिक की बढ़ोतरी। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रामानंद मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रामानंद भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रामानंद मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
2: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत ये अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
1: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov

mumbai.in और हमारी न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोची में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी दिशा देशों के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली एनसीआर में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे ये भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजीशन तक कोई ईएमआई नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अलनीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अलनीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मॉनसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया और राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री ने बताया कि गृहमंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पर बल दिया है। केरलम

0: निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मुज गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: और अब मौसम का भी रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर था। और अब खेलों में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न। तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप श्रोता सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार।

बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब समय हो चला हमारे प्रोग्राम हिट्स ऑफ 90s का। जी हाँ, हिट्स ऑफ 90s में आज जो आप पहला गाना सुनने जा रहे हैं वो है फिल्म संघर्ष से। ये फिल्म तनुजा चंद्रा द्वारा निर्देशित 1999 की बॉलीवुड साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। इसमें अक्षय कुमार, प्रीति जिंटा और आशुतोष राणा मेन रोल्स में हैं। इस फिल्म के लिए आशुतोष राणा को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार उन्होंने इस फिल्म में जीता। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना सोनू निगम की आवाज में।

0: आपने सुना ये गाना फिल्म दिल से, आवाज थी उदित नारायण एवं महालक्ष्मी के। ये दिल से फिल्म बनी थी 1998 में। ये रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जिसे मणि रत्नम ने लिखा और निर्देशित किया है। उन्होंने राम गोपाल वर्मा और शेखर कपूर के साथ मिलकर इसका निर्माण किया है। असम में चल रहे उग्रवाद की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म में शाहरुख खान और मनीषा कोइराला मेन रोल्स पर है, जबकि प्रीति जिंटा ने इस पे जो सहायक रोल में इस फिल्म में अपनी करियर की शुरुआत की थी।
1: पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
0: आइए अब सुनते हैं सैनिक फिल्म का ये गाना। इस फिल्म में है अक्षय कुमार, अश्विनी भावे, रोनित रॉय और फरहीन। ये एक एक्शन फिल्म है। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना कुमार सानू एवं साधना सरगम की आवाजों में।

आप सुन रहे थे तय खमती श्रोताओं का कार्यक्रम। आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आइए चलते हैं हमारे प्रोग्राम बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्मी गानों की ओर। बॉलीवुड अपडेट में आइए सुनते हैं बॉलीवुड की खबरों की। यश और कायर आडवाणी की फिल्म टॉक्सिक का पहला गाना तबाही रिलीज होते ही वायरल हो गया है। इंटीमेट सीन्स और शानदार केमिस्ट्री की तारीफ हो रही है, लेकिन कई यूजर्स कायरा के किरदार को सिर्फ आई कैंडी बताए जाने पर सवाल उठा रहे हैं। सोहेल खान के बाद अब उनकी एक्स पत्नी सीमा सचदेह

कि सजदे भी अलायंस शो में शामिल होने वाली हैं। सीमा ने बताया कि शो में जाने को लेकर उनके बड़े बेटे ने उनके सामने एक शर्त रखी है, जबकि छोटा बेटा काफी एक्साइटेड है। अंशुला कपूर की शादी के बाद हुई कॉकटेल पार्टी में जाह्नवी कपूर ने जमकर मस्ती की। ब्लू सूट में एक्ट्रेस ने जलवा तो बिखेरा ही है, साथ ही ढोल बजाकर और औरी के साथ डांस कर पूरी महफिल लूटी है। 1970 के दशक में महेश भट्ट ओसो के अनुयायी थे, लेकिन बाद में उन्होंने ओसो के साथ का साथ छोड़ दिया और यूजी कृष्णमूर्ति से जुड़ गए। उनकी बेटी पूजा भट्ट ने बताया कि कैसे उनके पिता के ओसो से अलग होने के बाद परिवार को धमकियां मिली और उन्हें सुरक्षित जगह पर रखा गया। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को अचानक हटाए जाने के बाद कहानी में सीनियर पुलिस ऑफिसर का रोल करने वाले एक्टर कमलजीत सिंह का गुस्सा फूटा है। कमलजीत सिंह ने फ्रीडम ऑफ स्पीच पर गंभीर सवाल उठाए हैं और खुलासा किया है कि डायरेक्टर हनी त्रिहान इस फैसले के खिलाफ अब कोर्ट का रुख करेंगे। सिंगर विपिन अनेजा इन दिनों इम्तियाज अली की फिल्म में वापस आऊंगा कि अपने नए गाने तेरे पास में को मिले रहे शानदार रेस्पॉन्स से बेहद खुश हैं। उन्होंने इस गाने के पीछे की मेहनत और एआर रहमान से मुलाकात पर बात की। सौरव गांगुली की बायोपिक दादा का पहला पोस्टर रिलीज हो गया है। फिल्म में राजकुमार राव क्रिकेटर के आइकॉनिक लुक में नजर आए हैं, लेकिन फर्स्ट लुक सामने आते ही सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग भी शुरू हो गई है। नताशा अपना लाडले बेटे संग फुल ऑन मस्ती के मूड में दिखाई दी। उन्होंने बेटे संग खूब एंजॉय किया। आलिया भट्ट और शर्वीर स्टारर स्पाई यूनिवर्स की फिल्म अल्फा के लिए ब्लॉकबस्टर यूजर्स का सस्ता टिकट ऑफर भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। मंडे टेस्ट में फेल होने के बाद फिल्म को मंगलवार से एक बड़े जंप की उम्मीद थी, लेकिन पांचवें दिन की कमाई में बहुत खास जंप नहीं आया है। 7 जुलाई को मुंबई में अंशुला और रोहन की शादी का ग्रैंड रिसेप्शन रखा गया था, जिसमें फिल्मी दुनिया की कई बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुईं।

आइए अब सुनते हैं रोमी एवं तनिष्क बख्शी की आवाज में तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म का ये गाना।

0: दोस्तों, आप सुन रहे थे हमारे साथ प्रोग्राम बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्मी गाने। अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे वांचो श्रोता का समाचार।
1: इजा आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ अनि जुलाई लेट मानी चे तारीख बुधवार इरुमा केम वांचो का हो अपाई फाले मंचुई जमी खमे इंडिया या इंडोनेशिया निये टेररिज्म होचा होरान बामा खतले हाय के बोमा हलके होचा होरान बामा इंटरनेशनल वानलम तेमा पांगनुसा वै नो तमले अवा बाखैले होले हले जकार्ता मा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या इंडोनेशिया प्रेसिडेंट प्रबोवो सुब्यांतो निये बायलेटरल गोनो रंगवन फैमा नो तमले गायकमा लीडर्स निये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कमिटी ए क्याके जाट्टा होनी पुरम अनत होठम ओम लाले तुमा अदन ले मोक्सा पु लेके के होठम बु बामा खत ले जाउ वनंग मोट ले होले नकरम तो फवांग लेका के प्राइम मिनिस्टर मोदी अनि निरम हान पकांग मेलबोर्न तो ता लाले थमरम लेके इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल सबमिट हकाई एजुकेशन मिनिस्टर पीडी सोना मनी एजुकेशन

0: कमिश्नर अमजद टाक फैटमले ईटानगर के लोक भावन तो मुइले गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के ती परनाक फै अपोंगलाले स्टेट अंके लाइन ओ सत मोड बामा आरों का खामा खल्लेचु जोटे अंके जारबम गमलिन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज फन अमय अंक बामा तम तम खल्ले यो टिकटो आइलवनले हायमा गवर्नर ए लाइन ओ नाउ समिया लाइन ओ मी फैकल्टी मेंबर्स थम रोंगमा ले वक्ते मशीन ले ना चंको आंग इपोंग के ट्विटर बोमा लाइन ओट एडमिनिस्ट्रेटिव सट मोड बोमा इंफ्रास्ट्रक्चरल स्टैंडर्ड्स पकले खले टिकटोल को कोला काले गवर्नर एजुकेशन मिनिस्टर तो डिपार्टमेंट पर ना मई ले मोक के गन लाले मास्टर बु टीचर्स रजिस्ट्री पोर्टल मखंग ए अले अचे के मई दो आला चोकले ची हया खंग स्टेट मा लाइन ओट लम फंचु ना मई हई हबोमा मास्टर बुचु पांगनु खा तोवै अजित लना ताइको लचु वनले चीफ सेक्रेटरी मनीष कुमार मनी गवर्नमेंट सटमोट कैबिनेट का फन बजट का ngai बोमा मा मा खखा खके प्रोग्राम्स बुबा माले अरो अंगले ला के थमसा अटाल के सेनियर ऑफिसर्स मीटिंग ओ कम लखले हायमा टीबी मुक्त भारत अभियान बामा अरो के मा सीएसए हायतो नोतमले मोका गमोट लेखत लेवन के बोमा गवर्नमेंट ची मखांग अरुणाचल प्रदेश टीबी चिताइ के चावानंग ना चांगले तुंगले ngo के ते मना चांग आंग सेना गवर्नमेंट ऑफिसर्स बु ए टीबी का मितो पिक्सेले मिहक तुइपोंग तकु तो हुमेले को हे ले रोंगदन लकाले हाबोमा स्मार्ट मीटर बु अपातंग के बामा अरों के मचु सीएसए चिप इंजीनियर आंग हया मोटो अबकु मकनपोय हाबोमा होमो चीपोंके सतमोट बामचु चिंगांग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स बुफे लेट पोले थामनी पोंगतकु मा अरों हाइले तमले डिप्टी चीफ मिनिस्टर चाउना मेने मनी मिनिस्टर फॉर एनिमल हस्बेंड्री गैब्रियल डी वांगसुपे तमले डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री वेटरनरी एंड डायरी डेवलपमेंट ची मखांगे अलाइके कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप बामा रोले हया मीटिंग मा डायरी इंफ्रास्ट्रक्चर पन अमय अंके कॉल चेन हिया माहु समती साइले अपो अतम अंके मोटलम अखौ अंके चम्मय अलिक पन ले थाम अंके बोमा माहु ओसु हिया ओ रेनु म थाम अंके बामा लेवन ले हया खामा होठो होठो तोके मोटली सत लिबु बामा टिकटो सिग्नल ट्विटर टेम्पंग तैपोइ लेके बोमा हले अरों मोंके मोटो ना हाई आंग माइके मॉडल रिंगले मोक्सा अंग बामा ले चुरोंले मनी रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर औजिंग टासिंग ए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना डीडीयूकेजी तंपाई डीडीयू जीकेवाई 2.0 खामा क्याके ट्रेन कैंडिडेट्स बु आंग अपॉइंटमेंट लाइक वाक बु पनलेकोले हाया कैंडिडेट्स बु रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट खामा अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन एआरएसआर एलएम चिमा खंग ए अंगोट के ले जंगराम स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम अनोला शुक्ल को थम चंगले हाया कैंडिडेट्स बु तो फुमराम ले वन कमा मिनिस्टर ए मामुन ममत तो मोंगको ले माइले बक बक खैले काले चिए एआरएसएल एआरएसआर एलएम प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज ट्रेनिंग पार्टनर्स बोमा मोटमी थम तोल चुआ चोकले मारियांग पुलिस स्टेशन चिमखांग लाइनो नौसमे पोक्सो वानलम बामना चिंगलाले मनी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मा पोक्सो एक बामा अवेयरनेस प्रोग्राम तुजाले हायमा लाइनो नौसम हामा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पोक्सो एक खामा वानलम तेमपंग तैपोइ लेके खनक चंगसा तो चिमैके मोंगते हिया मैके मोंगते फै जोम छाय पोइ लेके बामा ले अपोनो लकोले हायाबोमा इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन बोमा 112 लेके इमरजेंसी रेस्पोंस सपोर्ट सिस्टम बामा चु अनो लकोले हाया प्रोग्राम नाउ सम खुइ कप होनपो जेनो लको के बोमा होनजे बुचु ना चिंगला ले तुजा के संगले ईटानगर के मेट्रोलॉजिकल सेंटर ए पापुम परे ए सियांग तिराप बोमा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट खानपक माले ऑरेंज अलर्ट का होले हजा डिस्ट्रिक्ट बुमा रंग रेनु मजहु वाट लवे तैले होले हाबोमा डिस्ट्रिक्ट बंजत येलो अलर्ट खामा क्याकले Men's cricket ma maya Nottingham to Trenbridge honui ma apan ke thamram leke T20 international ma India to England ne hota sa aga runs ma khangal le hale England ne honi ani runs ring to kopai apan ke ma India e banta point ali overs bama vai puram ban anat runs lan lan ring le ring tan to wickets pangwe baklamat ke changle Hayatoma India toss lat lat le ball vai kyakachanke Haboma football ma Vancouver to FIFA World Cup quarter final hanpak ma apanke ma Colombia to Switzerland e 1954 rank mong phai ma pongwang leke ang penalty shootout ma Aramten to goal ali chole lat le Techima Atlanta to Egypt to Argentina echu ani sen to goal aram chole lat le Ani ka ho ibai Ija Akash
1: आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का समाचार. वांचो श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर. इस पर ट्यून करके आप सुन सकते हैं वांचो श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम. और आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में, जहां होती है दिल से दिल की बात. और आइए अब सुनते हैं हिन्दी फिल्मी गाने. लीजिए पहला गाना सुनते हैं तहलका फिल्म से बाबला मेहता, अनुराधा पौडवाल एवं कुमार सानू की आवाजों में.

0: पल रहते ये।
1: अभी आप सुन रहे थे वांछित श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। श्रोतावली जब प्रस्तुत है ईदुमी शिमी श्रोताओं का कार्यक्रम।
2: एचा आकाशवाणी ईटानगर आचला पुची हेयु लेउलिनी एतानिचे ईदुमिस्मी आहोला केजे दरगलंबो यतन दक्ता अतिका एममाचे आहुमी ये है इंडिया ने इंडोनेशिया में लाहाय गजिता ने जकार्ता में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबो सुबियांतो में लाहोमेगा महो लगाने यतन दताची केबा केबा लो आचुको कोमाने आहुमी एया आनोची पोन जोंदगाव लातिगा बदा आहोगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल चे मामराहुन्या तारुयु सेंक्शन कमिटी कोकोमाने आतिबाची इमुदोने आतिका एहायांदो आहुमी एया आमु आखाची नाने एसकानिमे लगाने

आप सुन रहे थे इदुमिस में श्रोताओं का समाचार। इदुमिस श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम एफ 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ पर। इस पर चुन करके आप सुन सकते हैं इदुमिस में श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम और आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ में। श्रोताओं आइए सुनते हैं हिंदी फिल्मी गानों का ये प्रोग्राम। आइए सुनते हैं इस फिल्म में पहला गाना गुनहगार से कुमार सानू एवं साधना सरगम की आवाजों में।

Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे हिंदी फिल्मी गाने। आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी रानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में। हमारी इस दूसरे प्रसारण सभा के प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाने में आज हमारे साथ थे प्रसारण अधिकारी पंचानंद डोले, तकनीकी अभियंता अमित कुमार सक्सेना और स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सभी सहकर्मी। और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार, उसके तुरंत बाद आप सुन पाएंगे प्रोग्राम गुड इवनिंग ईटानगर। तो आगे के सुहाने सफर में आपके साथ होंगी आपकी चहेती आरजे मंजू पामू। तो मुझे आपके रेडियो साथी कविता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: Pare Hydro Power Station is currently in operation. Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also, avoid entering the river bed to collect sand, stones, or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings, or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay, or set up temporary shelters in riverbeds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
1: Here, Akashwani, Itanagar, Dibrugarh. Majusa Duba Sarum Sum, Julailing Ramachet Tarik, Pang Hajanida Kokropang Aro Machuranga, Rungrang Lokuang Konkamamaira, India Rene Indonesia Mungra, Tirojam Pur, Nari Chekaita Aro, International Law Kanun Mama, Tirojam Purtagma, Mungkang Sacharang Rar Morota, Prime Minister Narendra Modi, Nay Indonesian President Prabowo Subento Tungnang Manisa Jakarta Hanang Rafanta Hai Joint Statement Kutu Perju Mungkang Wang Terrorist Nei Terrorism Organization Stam Sangnang Action Lamrang Moro Walang Wanaira Rota Perma Terrorism Pertengma Kamnang Mung Nei Tung Rohom Per Seheng Lin Mung Moro Prime Minister Modi Renei Indonesian President Subento Rora Lamta Honorable Pradesh Education Minister P.D. Sona Nai Education Department Commissioner Amjad Tak Pamanai Itanagar Nang Lok Bhavan Nang Honorable Pradesh Governor Lieutenant General Retired K.T. Parnaik Jamma Ram Raude State Wang Education Manpa Rafanta Parju Jyoti Hawang Jarbam Gamlin Government Law College Pa Aryang Satairo Rafanta Nangma Arau Higher Education Institutions Tampa Seng Linma Kamung Nang Dob Rafanta Parju Governor Machawang Hanra Parpa Rairangma Lamlu Lamrang Morau Rota Nang Liwan Sara Nai Faculty Member Seng Ra Ravura Parpa Ahama Raikurangma Academic Nai Administration Ra Infrastructure Standard Tampa Tahurang Morota Aro Education Department Ra Reforms Laman Khama Governor Ra Rantahutanang Education Minister Ra Teachers Registry Portal Kaulam Rationalized Teachers Transfer System Life Sehe Khama Education Minister Pa Salankata Pariju Governor Ra Iril Lamlu Sehe Raure State Vapamnang Master Hiang Transfer Pa Transparency Nai Accountability ra equitable deployment tayang ro education system life sehang ma hohai kuching ro ta Arunachal Pradesh Chief Secretary Manish Kumar Gupta ra Solkri Kamwang amai kayang ro man pa rafan ma ngorau nei cabinet decision tam manra budget announcement nei parma balang areng programs tam man pa rafan ma ngorau manisa senior officer hiang meeting ta thung ta Meeting nang TB Mukt Bharat Abhiyan Kamung nang Rafanta Praju Chief Secretary ra Wadob mai Sacharang Rar Ngorokta nang Arunachal Pradesh pa TB Free Tayang Rangma Senior Government Officers Heng ra TB Ragwan mai Asi Kajay Jagnang Lamrang Ngorokta Chief Secretary ra Smart Metering Se Kamung nang Rafanta Praju Chief Engineers Heng ra Executive Engineers Heng Jamanai Vendors may hang jam ajiling tech langnai khag meeting tatung rore kam kayang ra prapa narima rairang moro chief secretary ra engineers heng moro ta animal husbandry nai veterinary ra dairy development department ra road map kutu prakamunang Arunachal Pradesh डिपुटी चीफ मिनिस्टर चाउना मेन र नै अरुणाचल प्रदेश एनिमल हस्बेन्ड्री नै भेटेनरी मिनिस्टर गेब्रियल देनवाङ वाङसु र मनैसा रफान्त पन्वा नै र मेटिङ नाङ डेरी इन्फ्रास्ट्रक्चर प सेङ दिनम कमुङ नाङ नै कोल चेन नै मिल्क कलेक्सन नेटवर्क प थयुङम कमुङ नाङ र लिपस्टक हेल्थ केयर प तह मराफर्म डेरी नै पोल्ट्री सेक्टर्स प तसेनम ताम कमुङ नाङ रफान्त अरुणाचल प्रदेश रूरल डेवलपमेंट नई पंचायती राज मिनिस्टर ओजिंग तासिंग र मनैसा दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2.0 कमु ओ जखुंग नंग ट्रेन किनिदेस हेंगम अपॉइंटमेंट लेटर लिख प कुत अरुणाचल स्टेट रूरल लेवलीहुड मिशन र अरुणाचल रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जखुंग नंग जिलिंगरोम राम स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम तथों ट्रेनिंग प किनिदेस हेंग कुरी तुम फान परसा मिनिस्टर र किनिदेस हेंग रंध तनांग मामा ड्यूटी प अहम कुरीरंग मोरो किनिदेस हेंग मोरो परजु मिनिस्टर र अरुणाचल स्टेट रूरल लेवलीहुड मिशन प सचा खाम नई प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी तामरा इम्प्लॉयज हेंग प सचारंग खाम रनब स्कूल लिगवनसाम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पीओसीएसओ पोक्सो एक्ट कानून मानप ततक तांगम तानरौ मारियांग पुलिस स्टेशन र मनैसा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मारियांग नंग पोक्सो एक्ट कमुंग न अवेयरनेस प्रोग्राम ततुंग तपरजु लिगवनसाम पोक्सो एक्ट कानून मानप फानकुत परजु अवेयरनेस प्रोग्राम नंग लिगवनसाम इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 1098 माननै इमरजेंसी रेस्पोंस सपोर्ट सिस्टम नंबर 112 मानदब फानकुत मेन्स T20 क्रिकेट नंग मनीरंजा इंग्लैंड मुंग नंग नॉटिंगहम हानंग ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम नंग इंग्लैंड टीम ने इंडिया टीम तुंग नंग थर्ड T20 टू

0: नमस्कार दोस्तों, तांगसा डायलेक्ट न्यूज के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं अरुण एफएम प्रसारण सभा में। स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त 4:28 हो रहे हैं और इसी के साथ ही शुरू होती है हमारी आज की तीसरी प्रसारण सभा। और हाँ, थैंक यू सो मच कविता जी आगे का कार्यभार मुझे सौंपने के लिए। उम्मीद करती हूं कि आपका ये शाम बहुत खूबसूरत बीते। श्रोता, ये भी बताना चाहेंगे आपको कि इस वक्त स्टूडियो तथा अरुण एफएम ट्रांसमीटर में हमारे बीच मौजूद है प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी आरजे मंजू पामो। ज्ञान ऐसा धन है जिसे कोई नहीं चुरा सकता। ज्ञान सबसे बड़ा धन है। शिक्षा और ज्ञान व्यक्ति को जीवन भर मार्गदर्शन देते हैं। धन समाप्त हो सकता है लेकिन ज्ञान हमेशा साथ रहता है। श्रोता, आप आनंद ले रहे हैं हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज का। चलिए मनोरंजन के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लिए चलते हैं आपको कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर की ओर।
1: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced Level 2 ADAS, yes. Smart powered tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
2: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
3: Good evening.

दोस्तों, ज्ञान एवं मनोरंजन पर आधारित कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में स्वागत करती हूँ आप सभी का। जी हाँ, मजेदार गीतों के साथ साथ कुछ बहुत जरूरी बातें भी होंगी आपके साथ। दही को अपनी थाली में रोज जगह दिलाइए, सेहत और स्वाद दो

दोनों का खजाना पाइए। पाचन रहे दुरुस्त, शरीर बने ताकतवर, दही खाने की आदत आज ही अपनाइए। जी हाँ दोस्तों, शायद ही ऐसा कोई होगा जिन्हें दही पसंद नहीं आता। बड़े बूढ़े बच्चे सभी पसंद करते हैं दही। और इसके क्या क्या लाभ है, इसके खाने से क्या क्या फायदे होते हैं और किन लोगों को नहीं खाना चाहिए दही, आज हम इस कार्यक्रम के दौरान बताने वाले हैं आपको। सबसे पहले दोस्तों, स्वास्थ्य लाभ, दही के बारे में हम ऐसी ऐसी बातें करेंगे जिन्हें सुनकर आप भी अचंभित हो जाएंगे कि अच्छा, इन लोगों को दही नहीं खाना चाहिए, पहले शायद आपने सुना भी नहीं होगा। दोस्तों, दही एक ऐसी चीज है जिसे हम सभी पसंद करते हैं और भारतीय भोजन का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन B12, फॉस्फोरस, पोटेशियम और प्रोबायोटिक यानी कि अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स आंतों में अच्छी बैक्टीरिया बढ़ाते हैं। कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं में भी लाभ मिलता है। एंटीबायोटिक दवाई लेने के बाद आंतों में संतुलन को सुधारने के लिए भी दही खाने की सलाह दी जाती है। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है दही। जी हाँ, दही कैल्शियम और फॉस्फोरस का अच्छा स्रोत है। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से बहुत ही लाभदायक माना जाता है। नियमित मात्रा में दही खाने से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली और भी बेहतर होती है। बिना अधिक चीनी और नमक वाला दही संतुलित आहार का हिस्सा बन सकता है। यह हमारे शरीर में रक्तचाप और हृदय स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में काफी सहायक माना जाता है। आगे आपको और भी बताऊंगी कि दही कब खाना चाहिए और किन लोगों को नहीं खाना चाहिए इस कार्यक्रम के दौरान। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस गीत का सुपरहिट मूवी RRR से राग पटेल की आवाज में।

0: dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Pay Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next-gen K-Series, 1.0-liter dual-jet, dual-vivity engine and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: तो श्रोता एक बार फिर से बता दें आपको कि आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर. मैं हूं आपकी दोस्त आपकी आरजे मंजू पामो और इस कार्यक्रम के दौरान आज हम बता रहे हैं आपको कि दही कितने लाभकारी है हम सभी के लिए, क्यों शामिल करना चाहिए दही हमारे डाइट में और किन लोगों को नहीं खानी चाहिए दही और कब नहीं खानी चाहिए दही. दोस्तों रात में बहुत अधिक मात्रा में दही खाने से कुछ लोगों को पाचन में असुविधा या कफ की समस्या बढ़ सकती है. अगर रात में खाना हो तो कम मात्रा में खाया कीजिए, वो भी कमरे के तापमान पर रखा हुआ दही. चाहे तो इस दही पर आप काली मिर्च या भुना हुआ जीरा मिलाकर भी खा सकते हैं, लेकिन फ्रिज में रखा हुआ या फिर फ्रिज से निकाला हुआ दही स्पेशली रात को नहीं खाया कीजिए. बहुत ठंडा फ्रिज से निकाला हुआ दही तुरंत न खाएं, विशेषकर यदि आपका गला संवेदनशील हो, यानी कि यदि आपका गला बहुत ही सेंसिटिव हो तो आप फ्रिज से निकाला हुआ दही ठंडा दही न खाएं. लंबे समय तक रखा हुआ दही, कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि लंबे समय तक दही फ्रिज में हम रखकर भूल जाते हैं, लेकिन इस तरह का दही जो बिल्कुल खट्टा हो जाता है इस तरह का दही बिल्कुल भी ना खाएं. और साथ ही साथ दोस्तों कुछ लोगों को मिल्क से एलर्जी है, दूध से एलर्जी वाले लोग दही बिल्कुल भी ना खाएं. कुछ लोग दही थोड़ी मात्रा में सहन कर लेते हैं जबकि कुछ को परेशानी हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें. किडनी की गंभीर बीमारी वाले लोग, उन्हें प्रोटीन और पोटेशियम की मात्रा नियंत्रित रखनी पड़ती है, इसीलिए दही अगर आप पसंद करते हैं किडनी प्रॉब्लम वाले लोग तो डॉक्टर की सलाह पर ही दही खाया कीजिए. बार बार सर्दी या गले की तकलीफ होने वाले लोग बहुत ठंडा दही खाने से हमेशा बचाए रखें खुद को. तो चलिए दोस्तों इसी बात पर आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस अगले गीत का जिसे हमने लिया है ओ माय गॉड 2 फिल्म से. उम्मीद करती हूँ कि दही खाते समय आप इन बातों का ध्यान जरूर रखेंगे.

0: दोस्तों ओ माय गॉड टू फिल्म के इसी गीत के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लेकर आएंगे एक और नया अंक कुछ और मजेदार बातों और गीतों के साथ। फिलहाल बताना चाहेंगे आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से हिन्दी और अंग्रेजी में समाचार, जिसके तुरंत बाद आप सुन पाएंगे नॉक्टे डायलेक्ट न्यूज और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक नॉक्टे डायलेक्ट न्यूज के बाद।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांबानंद मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न। तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता ने 21वीं वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर सरकार की प्रमुख पहलों, मंत्रिमंडल के निर्णयों, बजट घोषणाओं तथा अन्य प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। स्कूली बच्चों को पॉक्सो अधिनियम की प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले के मारियांग पुलिस थाना द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने राज्य के पशुपालन मंत्री गैब्रियल डिवांगसु के साथ पशुपालन, पशु चिकित्सा एवं डेयरी विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत व्यापक कार्य योजना की समीक्षा की। अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ओजिंग तासिंग ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2.0 के तहत प्रशिक्षित सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान के बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में 2% की अधिक की बढ़ोतरी। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला होगा। और वहीं राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से पराजित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर प्रांबानंद मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा है कि प्रांबानंद भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव के बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। प्रांबानंद मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विश्व महत्व रखता है और इसके विकास के प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा है कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
2: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत ये अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता ने 21वीं वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सरकार की प्रमुख पहलों, मंत्रिमंडल के निर्णयों, बजट घोषणाओं तथा अन्य प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा के दौरान उन्होंने सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर देते हुए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से अभियान के तहत एक एक टीबी मरीज को गोद लेने का आग्रह किया ताकि टीबी मुक्त अरुणाचल प्रदेश के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। स्मार्ट मॉनिटरिंग के कार्यान्वयन की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने संबंधित चीफ इंजीनियर्स को कार्यों की प्रगति और बाधाओं की नियमित समीक्षा के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तथा वेंडर्स के साथ प्रत्येक माह दो बार बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। स्कूली बच्चों के बीच पॉक्सो अधिनियम के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले में मारियांग पुलिस थाना द्वारा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मारियांग में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, पॉक्सो के प्रावधानों तथा गुड टच और बैड टच की समझ के महत्व के बारे में जानकारी प्रदान की गई। विद्यार्थियों को 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन और 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली के बारे में भी अवगत कराया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा, जागरूकता और सुरक्षित शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देना था। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने राज्य के पशुपालन मंत्री गैब्रियल डिवांगसु के साथ पशुपालन, पशु चिकित्सा एवं डेयरी विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत व्यापक कार्य योजना की समीक्षा की। बैठक में डेयरी अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने, कोल्ड चेन और दूध संग्रहण नेटवर्क के विस्तार, पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार तथा डेयरी और पोल्ट्री क्षेत्रों में विकास में तेजी लाने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में पूर्व की पहलों की समालोचनात्मक समीक्षा करने, उनकी कमियों से सीख लेने तथा दीर्घकालिक और टिकाऊ परिणाम देने वाला मजबूत मॉडल विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ओजिंगता सिंह ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2.0 के तहत प्रशिक्षित सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ARSRLM द्वारा सूचीबद्ध परियोजनाओं कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से संचालित 3 महीने तक चले कौशल विकास प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद इन अभ्यर्थियों को देश के विभिन्न हिस्सों में रोजगार प्राप्त हुआ है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री

0: सिंह ने लिखा है कि ये उपलब्धि ग्रामीण युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान करने, उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने तथा स्थायी आजीविका के अवसर सृजित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ईरान ने हरमेजंगा प्रांत में महाशहर बंदरगाह में अमेरिकी हमले के जवाब में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमेरिका के 50 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमेरिका के पांचवें बड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान के बशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम की कोची में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों का दर्शाने वाली प्रदर्शनियों भी लगाई गई है। अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के बीच खेले गए मुकाबले में पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इससे पहले राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हराया। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता मजबूत होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: This is Akashwani, the news read by Morgan Bagram. Prime Minister Narendra Modi concluded his state visit to Indonesia and has departed for Melbourne for the second leg of his three-country tour. Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal, in a social media post, said that in a special gesture of friendship, Prime Minister Modi was seen off at the airport by Indonesian President Prabowo Subianto. Mr. Jaiswal added the visit to Indonesia yielded significant outcomes across key areas of cooperation, strengthening the India-Indonesian partnership and setting an ambitious agenda for future collaboration. India and Indonesia have taken a significant step to deepen cooperation in higher education. Prime Minister Narendra Modi yesterday announced that the Indian Institute of Management Bangalore will establish its first overseas campus in Indonesia. The campus will be set up at the Singhasari Special Economic Zone in East Java and is expected to serve students and professionals from across the ASEAN region. Jita Mitra Desai, Professor IIM Bangalore, said the initiative is expected to strengthen academic collaboration, promote innovation and skill development, and further reinforce the strategic partnership between India and Indonesia. In the second leg of his three-nation tour, Prime Minister Modi will reach Melbourne today on a three-day visit where he will participate in the third India-Australia Annual Summit with the Australian Prime Minister, Anthony Albanese. Mr. Modi will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both countries. He will also address a large gathering of the Indian diaspora, who constitutes a strong pillar of the India-Australia relationship. The BRICS Women's Ministerial Meeting has commenced in Kochi. Union Minister for Women and Child Development Annapurna Devi and Secretary Anil Malik, among others, attended the main session organized as part of the meeting. Earlier in the morning, Union Minister of State for Women and Child Development Savitri Thakur and Secretary Anil Malik attended the plenary session. The joint statement will be adopted during the main session. India is hosting the 13th ASEAN-India Trade in Goods Agreement Joint Committee meeting in New Delhi to advance the review of the ASEAN-India Trade Pact. The Joint Committee meeting and its related meetings are being held in a hybrid format from 6th to 10th of this month. The Ministry of Commerce and Industry said that the Joint Committee provided strategic guidance to the subcommittees in their respective areas of work and urged them to expedite the finalization of the outstanding chapters under the Joint Committee review meeting. The subcommittees were assigned time-bound deliverables and encouraged to work closely to achieve tangible outcomes within the agreed timelines. Union Home Minister Amit Shah today spoke to the chief ministers of several states affected by heavy rainfall, flood-like situation and landslides and assured them of all possible assistance from the centre. Mr. Shah spoke to Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis regarding the heavy rainfall and flood-like situation in the state. During the conversation, Mr. Shah assured the Chief Minister of all possible assistance from the central government to support the Maharashtra government in dealing with the situation. Several parts of Maharashtra have been affected by heavy rainfall over the past few days. Mr. Shah also spoke to Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel regarding the situation arising from heavy rainfall and waterlogging in the state and assured all possible assistance from the central government to the state. In Thiruvananthapuram, the state government has announced an ex gratia payment of 5 lakh rupees to the families of those who lost their lives in the Wayanad landslide in Kerala. Chief Minister V.D. Sathisan said that work on the Wayanad tunnel will resume only after a detailed inquiry. Two NDRF teams are still at the accident site. 5 people remain missing and search operations are continuing, the Chief Minister said in Thiruvananthapuram. The Jammu and Kashmir administration today issued a fresh advisory for the Sri Amarnath Ji Yatra 2026, asking pilgrims to strictly follow the registration process and safety guidelines. Akashwani Jammu correspondent reports that the daily pilgrim cap fixed as part the Supreme Court's direction remains in force. That's all in this news bulletin. Namaskar.
3: अभी आप सुन रहे थे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। श्रोता लीजा प्रस्तुत है नोक्ते श्रोताओं का कार्यक्रम।
4: अब आकाशवाणी ईटानगर जिपगरवा नोक्ते प्रोग्राम अथुरंग जथा वानबंगा सनपो तंगरे न नोक्ते खोबोच तत्कत थजापुट पाचा 8 तारीख जुलाई जंग खोबोचो को देपा किमकिम तेसिया Indiania Indonesia ma terrorism apang form he nang strongly condemn hon ka. Wanini country mange ka terrorisms against fight hon rang apang country he room lama strong le coordinated action government de ko international law hisap ma ka motmin. Aringin pa Prime Minister Narendra Modi niya Indonesia President Prabowo Subianto tungnang Jakarta nang bilateral meeting de ko joint statement ko ngawa. Wanini leader mange ka pura world me Ban terrorist niya terrorist organization se against strict action kapanya arang zaruri. Wani ni leader arangin ko komin agree deka. Terrorism niya violent extremism pa. Ruka rang wani ni country aruma jomin cooperation honmin. Ate wan rom country tour second leg ko Prime Minister Narendra Modi thaja. Melbourne, Australia ponchi min. Ako 3 days visit ko tongmin di ko 3rd India-Australia annual summit komin part kapmin. एजुकेशन मिनिस्टर पी डी सोनानिया एजुकेशन कमिश्नर अमजाद तकमा मजा लोक भवन ईटानगर नंग गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल के टी प्रणायक तमनंग चोमिनवा मीटिंग को स्टेट ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम को रिव्यू होनवा अरदम को

हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर जोमिन मजबूत पोना खो को डिटेल में डिस्कशन होनका अरको जर्बम गम्बलिन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जोटे खो को ध्यान कोईका गवर्नर मंगे का कॉलेज नंग चली जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम अरे बुक लिखो तुम होन हनमिन तेमा एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन डिको इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोमिन बेटर बोना खो को चान कप का स्टूडेंट निया टीचर एक्सपेक्टेशन पूरा तादंग रंगा गवर्नर मा एजुकेशन डिपार्टमेंट रिफॉर्म ओरिएंटेड काम तारीफ होन रेका तेमा एजुकेशन मिनिस्टर पी डी सोना नंग टीचर रजिस्ट्री पोर्टल थ्रू रेशनलाइज टीचर ट्रांसफर सिस्टम लागू होन रंग मिन गएका गवर्नर मंगे का अरा अन्यान सिस्टम पर टीचर ट्रांसफर पा ट्रांसफरेंसी अकाउंटेबिलिटी दिको स्टेट वा टीचर है फेयर पोस्टिंग दंग मिन अरा पमा स्टूडेंट्स है लर्निंग क्वालिटी निया पूरा एजुकेशन सिस्टम पा जोमिन मजबूत दंग मिन चीफ सेक्रेटरी मनीष कुमार ममजा 21st सीनियर ऑफिसर मीटिंग चेयरमैनशिप होनवा आर मीटिंग को गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट स्कीम इनिशिएटिव कैबिनेट डिस्कशंस बजट अनाउंसमेंट दिको अहान प्रायोरिटीज प्रोग्राम प्रोग्रेस से रिव्यू होनवा टीबी मुक्त भारत अभियान रिव्यू मीटिंग पुट को चीफ सेक्रेटरी मा गई का अपन कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी पा टीबी पा खत्म होनमिन तेमा सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स नंग अपील होन का अपंग ऑफिसर से अर इनिशिएटिव खोनमा टीबी पेशेंट्स नंग एडॉप्ट होन दिको मोडट होन रंगे का अरुणाचल प्रदेश पा टीबी फ्री स्टेट ताबोनी रंगा डिप्टी चीफ मिनिस्टर चाउना मिन निया एनिमल हस्बेंडरी मिनिस्टर गैब्रियल दीवांग सुमा मजा डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंडरी वेटरनरी एंड डेयरी डेवलपमेंट नामा तैयार होन का कम्प्रिहेंसिव रोड मैप रिव्यू होन का मीटिंग को डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मजबूत बोना कोल्ड चेन निया मिल्क कलेक्शन नेटवर्क पर बोरा रंग लाइफ स्टॉक हेल्थ केयर पर बेटर बोना रंग दिको डेयरी निया पोल्ट्री सेक्टर ग्रो पर फास्ट होन खो को डिस्कशन होनवा रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर ओजिन तासिंग मा मोगनपा चा को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना डीडीयू जीकेवाई 2.0 को नंग ट्रेनिंग कम्प्लीट होनते कैंडिडेट से नंग अपॉइंटमेंट लेटर कोई का आर कैंडिडेट हेमा अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन ARSRLM थ्रू रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट खोन्नांग चोली का 3 month स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम पा सक्सेसफुली कम्प्लीट होन का मिनिस्टर मा कैंडिडेट्स हे नंग हने अचीवमेंट था कॉन्ग्रेचुलेट होन का दिको हने नंग हने जॉब पा सिंसियरली डेडिकेशन दिको प्रोफेशनलिज्म दम नंग का मोड रंगे का तेमा ARSRLM प्रोजेक्ट पा इम्प्लीमेंट हुआ था एजेंसी ट्रेनिंग पार्टनर दिको एम्प्लॉयर से अफोर्ड था रंग तारीफ होन का स्कूल लता है नंग पोक्सो एक का नंग अवेयरनेस बोरा रंग मरियंग पुलिस स्टेशन मा मजा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंग वांधे अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होनवा प्रोग्राम पोट को स्टूडेंट्स है नंग पोक्सो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक गानंग जानकारी कोई का हने नंग गुड टच निया बेड टच गानंग दिको अरे इम्पोर्टेंस गानंग बुझा थो कोई का स्टूडेंट्स है नंग एमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर गानंग मिन थो कोई का 1098 पा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर दिको 112 पा एमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम नंबर अरे प्रोग्राम मेन पर्पस पा लता है सेफ्टी रंग अवेयरनेस बोरा रंग होन का फुटबॉल को स्विट्जरलैंड में कोलंबिया नंग पेनल्टी शूट आउट को 4-3 महाराय का अरे मैच पा वैंकूवर नंग लूम्बा अरे जीन दम को स्विट्जरलैंड में 1954 दिको फर्स्ट टाइम फीफा वर्ल्ड कप को क्वार्टर फाइनल नंग हुई का मेन्स क्रिकेट को इंग्लैंड मा थर्ड T20 इंटरनेशनल मैच को इंडिया नंग 125 रन महारे का अरे मैच पा ट्रेंट ब्रिज नॉटिंगहम नंग लूम्बा मेट्रोलॉजिकल सेंटर ईटानगर मा पपुमपारे ईस्यांग तिरपनिया लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट रंग ऑरेंज अलर्ट इश्यू हुआ का अरे डिस्ट्रिक्ट वा आइसोलेटेड जगह है नंग रंगलिन खेप बालिप रंग पाटोंगता पाटांगे का अरे दम को चीवानसेट डिस्ट्रिक्ट रंग येल्लो अलर्ट इश्यू हुआ रे का थजानंग नुक्ते खबर पा अकुजराथोन मंगता अरो आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ वा से प्रोग्राम खबंग को लफंग दादा वा रुन्यन से तात मंगन

0: नमस्कार दोस्तों, नॉकटे डायलेक्ट न्यूज के बाद स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अरुण एफएम प्रसारण सभा में। जी हाँ दोस्तों, अरुण एफएम प्रसारण सभा यानी कि मनोरंजन का सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। चलिए आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव की ओर।
1: द मारुति सुजुकी विक्टोरियस इज फाइनली हियर and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced level 2 ADAS, yes. Smart power tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
2: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.

समा है सुहाना सुहाना, हवाओं में मस्ती से छा जाना, आपके शाम के सफर को कर देने और भी खुशनुमा, लेकर आते हैं हर शाम 6 बजे इवनिंग ड्राइव।

मेरे प्यारे दोस्तों, बताना चाहूंगी आपको कि आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का। पहला गीत आपने सुना धन की फिल्म से, और इस वक्त हमने पेश किया है आपके लिए इस गीत को हार्दिक संधू की आवाज में, कोड नेम तिरंगा फिल्म से।

Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

श्रोता, अभी अभी आपने आनंद लिया इस गीत का गदर टू फिल्म से, और इस वक्त हमने पेश किया है आपके लिए इस गीत को पापोन की आवाज में।

0: पर्दा।
1: श्रोता, पापोन के गाए हुए इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन मनोरंजन का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि आप सुन रहे हैं अरुण FM 103.1 MHz। चलिए इस बार आपको लिए चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर और आनंद लेते हैं कार्यक्रम शाम की महफिल का।
2: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced Level 2 ADAS, yes. Smart Power Tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
3: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.

0: Attention.
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 litre dual jet, dual VVT engine, and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500.
3: Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
0: Attention. Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

श्रोता कभी हाँ कभी ना फिल्म के इसी गीत के साथ ही बताना चाहेंगे आपको कि कार्यक्रम शाम की महफिल यहीं पर समाप्त होता है। चलिए इस बार आपको लिए चलते हैं कुछ और हिंदी फिल्मी गीतों की ओर।

0: Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced level 2 ADAS, yes. Smart power tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just rupees 10.49 lakh.
2: And benefits up to rupees 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.

श्रोता, एक बार फिर से बता दो आपको कि आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों का हमारे साथ अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और इस वक्त हमने पेश किया है आपके लिए इस गीत को उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में।

Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

श्रोता, चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म के गीत के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों का यहीं पर समाप्त होता है। और ये भी जान लीजिए कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से आदि डायलेक्ट न्यूज, और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक आदि डायलेक्ट न्यूज के बाद।

0: नमस्कार दोस्तों, आदि डायरेक्ट न्यूज के बाद फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अरुण एफएम प्रसारण सभा में। तो चलिए श्रोता, इस बार आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम आज के कलाकार की ओर।
1: द मारुति सुजुकी विक्टोरियस इज फाइनली हियर एंड हैज एवरीथिंग यू कुड इमेजिन इन योर एसयूवी। डॉल्बी एटमोस 5.7 सराउंड साउंड, यस। Advanced Level 2 ADAS, yes. Smart Power Tailgate with Gesture Control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
2: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम आज के कलाकार में। जी हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह कार्यक्रम आज के कलाकार में आज भी हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार के बारे में जिन्हें आप सभी हम सभी बहुत पसंद करते हैं, और साथ ही साथ लेकर आए हैं कुछ बहुत ही मजेदार गीत इन्हीं कलाकार से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान चीची के बारे में। जी हाँ, आप सभी के चहेते हसमुख गोविंदा के बारे में। 21 दिसंबर 1963 को जन्मे गोविंदा के पिता अभिनेता अरुण कुमार आहूजा ने एक फिल्म का निर्माण किया था जिसमें उन्हें घाटा हुआ था। गोविंदा की माता निर्मला आहूजा अभिनेत्री और गायिका भी हैं। फिल्म में नुकसान होने के बाद गोविंदा के पिता बीमार रहने लगे और कार्टर रोड के बंगले से उनके परिवार को विरार जाकर रहना पड़ा, जहां गोविंदा का जन्म हुआ। गोविंदा छह भाई बहनों में सबसे छोटे हैं और उन्हें प्यार से चीची बुलाया जाता था। गोविंदा वसाई के कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया उन्होंने। उनके पिता ने उन्हें फिल्मों में करियर बनाने की सलाह दी। फिल्मों में करियर बनाने की सोच रहे गोविंदा ने फिल्म डिस्को डांसर देखने के बाद घंटों डांस मूव्स की प्रैक्टिस कर अपना एक वीडियो कैसे तैयार किया। गोविंदा का पहला जॉब एक खाद का विज्ञापन था। फिल्मों में उनका पहला मुख्य रोल उनके अंकल आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म में था। गोविंदा ने अपनी दूसरी फिल्म लव 86 की शूटिंग जून 1985 में की और जुलाई के मध्य तक पूरी 40 और फिल्में उन्होंने साइन कर ली। गोविंदा अब तक 12 बार फिल्म फेयर के लिए नामांकित हो चुके हैं। वो एक स्पेशल फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन कैटेगरी में एक फिल्म फेयर और 4 जी सिने अवार्ड भी जीत चुके हैं। गोविंदा अब तक जी हाँ दोस्तों, गोविंदा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1986 में इल्जाम के साथ की थी। तब से लेकर अब तक वो 165 से भी अधिक फिल्मों में नजर आ चुके हैं। जी हाँ, आपके चहेते गोविंदा चीची जी के बारे में और भी बहुत सारी बातें करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस गीत का।

Attention! Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

श्रुता आप आनंद ले रहे हैं इस गीत का मुकाबला फिल्म से, और इस कार्यक्रम के दौरान आज हम बता रहे हैं आपको आप सभी के चहेते गोविंदा के बारे में। दोस्तों, गोविंदा के प्रिय अभिनेता धर्मेंद्र जी हैं। जब गोविंदा की पत्नी गर्भवती थी तब गोविंदा ने पत्नी को धर्मेंद्र की फोटो पास रखने की सलाह दी थी ताकि गोविंदा के आने वाली संतान धर्मेंद्र की तरह बहुत खूबसूरत दिखे। अपने करियर में गोविंदा ने डबल रोल के अलावा हद कर दी आपने फिल्म में 6 रोल निभाए। गोविंदा की कई फिल्मों के टाइटल नंबर वन होने के कारण उनका निकनेम नंबर वन पर गया था। गोविंदा ने कई कलाकारों के साथ बार बार काम किया, जैसे शक्ति कपूर के साथ उन्होंने 42 फिल्में की। निर्देशक देविड धवन के साथ गोविंदा ने कई सफल फिल्में दी हैं। देविड धवन और गोविंदा की जोड़ी एक तरह से फिल्म की सफलता की गारंटी हुआ करती थी।

श्रोता आप आनंद ले रहे हैं इस गीत का खुद्दार फिल्म से। बता दूं आपको श्रोता कि कादर खान के साथ गोविंदा ने 41 फिल्मों में काम किया और शक्ति कपूर, गोविंदा और कादर खान एक साथ 22 फिल्में कर चुके हैं। नीलम, करिश्मा कपूर और रवीना टंडन के साथ गोविंदा ने 10-10 फिल्में की हैं। फिल्म खुद्दार की शूटिंग के दौरान के लिए दोस्तों फिल्म खुद्दार की शूटिंग के लिए जाते समय गोविंदा मरते मरते बचे थे। उनकी कार एक दूसरी कार से टकरा गई जिस वजह से उनके सिर पर गहरी चोट भी लगी थी और खून बहने लगा था। इसके बावजूद भी उन्होंने शूटिंग रद्द नहीं की थी।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे निशी डायलेक्ट न्यूज। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अरुण एफएम प्रसारण सभा में। आइए श्रोता, आगे बढ़ते हैं और जारी रखते हैं मनोरंजन के इस सिलसिले को। आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों का।
1: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वारी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
0: हिंदी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में श्रोता, पहला गीत हमने पेश किया है आपके लिए राहत फतेह अली खान की आवाज में, अनजाना अनजानी फिल्म से।

फिर से याद दिलाना चाहेंगे आपको कि आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों का हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, और इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं स्त्री फिल्म के इस गीत का।

0: Attention! Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.

हम है राही प्यार के फिल्म के इसी गीत के साथ ही बता दो आपको कि हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये भी बता दो आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप आनंद ले पाएंगे स्थानीय गीतों पर आधारित कार्यक्रम अपना गीत का।

श्रोता मित्रों नमस्कार। कार्यक्रम अपना गीत में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं आपके रेडियो साथी गैर अतः। यह श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ज। अपना गीत कार्यक्रम के आज के इस अंक में हम प्रकृति और हमारे पूर्वजों से जुड़ी कुछ बातें करना चाहेंगे जो कहानियां एवं अनुभवों पर आधारित होंगे। और हाँ, बातों के बीच अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग जनजातियों का गीत तो शामिल होंगे ही, क्योंकि ये कार्यक्रम है ही गीतों का। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं मिजू मिस्मी गीत से, जिसे गाया है बाफेम्सो तायंग ने।

दोस्तों, आजकल का जो दौर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है, जहां हमारे पास लगभग हर चीज के लॉजिक होते हैं। मगर जरा पीछे मुड़ के पुराने जमाने में, खासकर हमारे अपने गांव के बारे में जब सोचती हूँ, तो देखती हूँ कि वे कैसे हर चीजों को नेचर के साथ, प्रकृति के साथ जोड़ कर रखते थे और कितनी बारीकी से चीजों का आकलन करते थे, चीजों को नोटिस करते थे।

आप सुन रहे थे जमुना सीरम की आवाज में गालो गीत। श्रोता, अगर इस गीत का मतलब समझे तो समझ आता है कि कैसे अपना कैलेंडर नेचर के जरिए हमारे पूर्वज बनाते थे या जानते थे। पुराने जमाने के लोग हर सीजन को पेड़ पौधे या पक्षियों की आवाज से या उनकी दशा से पहचानते थे। कौन सा पेड़ कब किस सीजन में फूलते हैं, फलते हैं या किसके पत्ते किस समय में रंग

अभी आप सुन रहे थे अनीता लिंगी की आवाज में ईदू गीत। श्रोता ट्यून किया है आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, और जिस पर कार्यक्रम चल रहा है अपना गीत। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये निशी गीत गोरा तारुप की आवाज में।

श्रोताओ, आज के इस कार्यक्रम में बस हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि भले ही जमाना टेक्नोलॉजी का हो, साइंस का हो, पर क्यों ना हम भी कुछ वक्त नेचर के साथ बिताएं। क्यों

इन बड़े बड़े इमारतों से दूर, हरियाली से भरे उन पहाड़ों में, उन गांवों में जहां साइंस और टेक्नोलॉजी का दबदबा नहीं है, वहां जाए और उन पक्षियों को देखे और सुने ये वादियां हमसे क्या कहना चाहती हैं, क्या दिखाना चाहती।

जानू तेची की आवाज में आप सुन रहे थे तांगसा गीत, और अपना गीत कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं तुत्सा गीत सोमगाक सोंगटेंग की आवाज में।

श्रोता, इसी तुत्सा गीत के साथ कार्यक्रम अपना गीत का आज का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है। एक और नए अंक के साथ फिर आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी गैर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

है जज्बात नए और इरादे बुलंद, रेडियो युवावानी पर धड़कता है हर नौजवान दिल का स्पंद। यहाँ जिंदगी के हर मोड़ पर एक नई शुरुआत है और रेडियो युवावानी के संग हर पल की अलग बात है। तो इसी के साथ आइए सुनते हैं आज का आखिरी गीत।

श्रोतागण, अभी आप सुन रहे थे कुछ हिंदी गाने और वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मैं फ्लोरेंस शर्मा आपकी रेडियो साथी विदा लेती हूँ आपसे ये वादे करते हुए कि अगले हफ्ते बुधवार ठीक इसी समय फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के साथ। धन्यवाद।

श्रोता, पहला गीत हमने पेश किया है आपके लिए 14वीं का चांद फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, और स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम भूले बिशरे गीत में।

0: सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13 ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10 जुलाई 2026 से 25 अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026। स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।

श्रोता, एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगी कि आप आनंद ले रहे हैं पुराने हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिछड़े गीत, और इस वक्त हमने पेश किया है आपके लिए इस गीत को यशुदास की आवाज में चितचोर फिल्म से।

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13 ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10 जुलाई 2026 से 25 अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
0: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

श्रोता, इसी गीत के साथ ही बताना चाहेंगे आपको कि कार्यक्रम भूले बिछड़े गीत यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। वेल, स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त रात्रि के 9:30 होने जा रहे हैं और इसी के साथ ही हमारी आज की अरुण एफएम प्रसारण सभा की समापन यहीं पर होती है। उम्मीद करते हैं इस सभा में प्रसारित कार्यक्रम आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। इसी तरह के ढेरों मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के साथ हम फिर हाजिर होंगे कल सुबह 5:48 पर। तब तक के लिए स्टूडियो तथा अरुण एफएम ट्रांसमीटर में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम के साथ मुझे यानी कि आपकी दोस्त आपके आरजे मंजू पामो को दीजिए इजाजत। लेकिन हाँ, कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी।

0: चटकने लगती है और समंदर की लहरों का मिजाज पूरी दुनिया का भूगोल बदलने लगता है, तब जन्म लेता है एक नाम, एल नीनो। ये सिर्फ मौसम का एक चक्र नहीं है, ये इम्तहान है हमारी धरती का, हमारी फसलों का और हमारी थाली का। आज जब ग्लोबल वार्मिंग के साए में खेती का भविष्य धुंधला रहा है, तब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे अन्नदाता किसान इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्या हमारी कृषि प्रणाली में वो लचीलापन, वो क्लाइमेट रेजिलियंस है जो इस महासंकट का सामना कर सके? इन्हीं सवालों पर आधारित है आज आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं दो बड़े विशेषज्ञ, मौसम के हर परिवर्तन पर पैनी नजर रखने वाले मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा और देश की मिट्टी और किसानों की नब्ज पहचानने वाले जाने माने कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
0: आनंद जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं और हमारे श्रोताओं और किसानों के लिए आसान भाषा में अगर आप समझाएं कि एल नीनो वास्तव में होता क्या है और प्रशांत महासागर में होने वाली ये हलचल भारत के मॉनसून को किस तरह प्रभावित करती है।
2: एल नीनो का बेसिकली क्या है कि जो आपका पेरू है, पेरू के जो तट है वहां पर सामान्यतः जो सी का जो समुद्र का तापमान होता है सरफेस का, वो सामान्यतः ठंडा रहता है। बट कई बार ऐसा होता है कि जो आपके ट्रेड विंड्स होती हैं, जो कि यहाँ के जो सरफेस वाटर को पेरू के तट से दूर धकेलती हैं और उसके चलते जो नीचे से पानी आता है समुद्र का, वो इसको ठंडा बनाए रखता है सतह को, और वो नॉर्मल कंडीशंस कहलाती हैं। जब ठंडा है सी सरफेस टेम्परेचर, ला नीना कंडीशंस। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये स्लैकन कर जाती हैं, ये वीक पड़ जाती हैं। जब ये वीक हो जाती हैं तो क्या होता है, जो पानी था वहां जिस जिसका सी सरफेस टेम्परेचर था थोड़ा ज्यादा था, वो हटा नहीं पाती और वो वहीं खट्टा रह जाता है। तो सामान्यतः जहां समुद्र का सतह का तापमान कम होना चाहिए था वो बढ़ जाता है। तो इसको कहते हैं एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ पैसिफिक सी ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू, यानी सामान्य से ज्यादा हो जाना सी सरफेस का टेम्परेचर का। और जब ये ऐसा होता है तो ये काफी सारे बदलाव लेके आता है कि जहां कहीं बारिश होती है पहले वहां सूखा पड़ने लगता है और जहां सूखा पड़ता है वहां बारिश होने लग जाती है, तो पूरे पैटर्न को। और दूसरी बात है, ये एक तरह का टेली कनेक्शन है। टेली कनेक्शन का मतलब है कि किसी तरह की समुद्र में या वायुमंडल में होने वाली हलचल एक जगह पे बहुत दूर, हजार किलोमीटर दूर के मौसम को और वहां के प्रेशर को, टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है। तो एक तरह का ये टेली कनेक्शन है और 4 से 5 साल के बीच में आता है, पहले भी आ चुके हैं। और जब जब ये आता है तो जैसे जैसे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो वाइल्ड फायर्स हो जाती हैं, हमारे यहाँ पे भी कभी कभार ये मौसम को, मतलब ये मॉनसून को प्रभावित कर देता है। क्योंकि ऐसे साल भी हुए हैं कि जब एल नीनो था मॉनसून खराब हुआ, और ऐसे साल भी हैं कि एल नीनो था और मॉनसून फिर भी ठीक था। और इस बार चर्चा हो रही है कि भाई ये जो है सुपर एल नीनो होने वाला है, हालांकि अभी जो है इतने ज्यादा तापमान नहीं बढ़े, 1 डिग्री के आसपास ही है तो ये ठीक है, मगर बोला जा रहा है, ऐसा प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि शायद ये 3 डिग्री तक पार कर जाए। तो ऐसा होता तो ये सुपर एल नीनो होगा, और जब ऐसा हुआ तो शायद ये उसके नेगेटिव इम्पैक्ट मानसून पे ज्यादा होंगे। और इस सबको मौसम विभाग ने, एक बड़ी अच्छी बात है कि क्योंकि आजकल ये सारी प्रिडिक्शंस ग्लोबल स्तर पे होती हैं, WMO इसको वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट करता है, तो ये सब सिग्नल पहले से दे दिए गए थे और मौसम विभाग ने भी इसको फैक्टर इन करा। और उसी को देखते हुए उनकी जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, उन्होंने इस बार कहा कि जो हमारा मॉनसून सीजन में हमें करीब करीब 115 सेंटीमीटर जो वर्षा मिलती है, लॉन्ग टर्म नॉर्मल जिसे कहते हैं, वो उसका सिर्फ 90% हमें मिलने वाला है, यानी कि 10% की कुछ कमी जो है मौसम विभाग ने इसको फैक्टर इन कर लिया। इसको देखते हुए ने देखा भी कि थोड़ा सा, हालांकि केरल में 1 तारीख को, जून को आता है मानसून, ये 4 तारीख को आया। हाँ, मुंबई और महाराष्ट्र में और जो आसपास के इलाके वहां इसकी मानसून ऑनसेट की थोड़ी देरी जरूर हुई और शायद उसने कुछ एरियाज में सोइंग को प्रभावित किया होगा।
0: हरवीर जी, जब मौसम वैज्ञानिक एल नीनो की चेतावनी देते हैं तो एक आम किसान के खेत में इसका सीधा असर किस रूप में देखने को मिलता है? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एल नीनो की चेतावनी के बाद वो कौन कौन सी फसलें होती हैं जिन पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराने लगता है?
1: असल में देखिए, जो खरीफ सीजन है वो हमारे एग्रीकल्चर का एक तो पहला सीजन होता है जब कृषि का साल शुरुआत हम मानते हैं, खरीफ दन रबी। खरीफ का मॉनसून पर बहुत बड़े निर्भरता है। हमारे देश में बहुत बड़ा क्षेत्रफल ऐसा है जो एक फसली है खेती जहां होती है, और वो इसलिए क्यों, जो वर्षा सिंचित जो क्षेत्र है वो भी खरीफ में कवर होते हैं, वो रबी में वहां बहुत जगह ऐसी होती है खेती नहीं होती है। और अब भी हमारा ये देखिए कि करीब 50% के आसपास ही हमारा जो हम कहते हैं कि अश्योर इरिगेशन कवरेज जो है, जहां पर निश्चित रूप से

0: सिंचाई की सुविधाएं जहां पर हैं अस्थायी रूप से, कि बारिश हो या ना हो पानी का इंतजाम फसल के लिए हो जाएगा। ऐसे में करीब करीब 50% जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल इसमें है। और ये भी है कि जब इसके बारे में चर्चाएं इस बार शुरू हो गई, पहले से तैयारियां मीटिंग्स हो रही हैं मिनिस्ट्री में, एग्रीकल्चर में एनडीएमए की मीटिंग हो रही है और मिनिस्ट्री में भी हो रही है, तो वो चिन्हित किए गए कौन से ऐसे जिले हैं जहां डिस्ट्रेस बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो जो किसान इंतजार कर रहे थे कि हमें फसल बोनी है जब बारिश होगी, तो उनको इसके लिए दिक्कत हुई। और उसका नतीजा ये है कि देखिए जून में जैसे शर्मा जी ने बताया कि मॉनसून थोड़ा डिले आया, और उसके बाद फिर जब वेस्ट कोस्ट की तरफ आता है तो वो बहुत ही स्लो उसका प्रेशर था, तो बेसिकली वीक जिसे हम कहते हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, और बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया था, एक ब्रेक जिसे कहते हैं वो आ गया। अब उसमें जब ये सब हिस्से आपके जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा और इवन कुछ सेंट्रल है, वहां पर ये जो बारिश पर आधारित जो खेती है उसका काफी बड़ा हिस्सा है, तो अब नतीजा ये हुआ कि वहां पर जो किसान समझता था कि मुझे बुआई करनी है तो वो डिले हो। अभी जो लेटेस्ट डाटा अभी 5 तारीख तक के आए हैं उसमें खरीफ में जो एवरेज हमारा जो सोन एरिया होता है वो करीब 21% से पिछड़ा हुआ है, और इसमें जो मार पड़ी है उन फसलों पर पड़ी है जो थोड़ा सा जिनको मार्जिनल क्रॉप बोलते हैं, कि जो एश्योर्ड इरिगेशन में फार्मर उनको नहीं बोता और ये लगता है कि बारिश होगी तो बो देंगे, जिसमें दालें हैं, तिलहन बड़े पैमाने पर है, तो ये जो नुकसान है हमें ये बड़ा है। इसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग तरीके से देखेगी, एग्रीकल्चर अलग तरीके से देखेगा, रिजर्व बैंक अलग तरीके से देखेगा। एक तो पहला तो स्टेप यही है कि एडवाइजरीज जो जारी है कि भाई किस तरीके से कौन सा फसल आपको अभी उगानी चाहिए, क्या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप पे जाना चाहिए, क्या आपको जो कम अवधि की जो फसलें हैं थोड़ा देर से आप बोएं, जून में नहीं बो पाए, जुलाई 15 तक नहीं बो पाए, लेकिन फिर भी आप इस वैरायटी का इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छी उपज ले सकते हैं, या फिर आप फसल चक्र बदल दीजिए, ये फसल इसमें कम बारिश में हो सकती है। तो ये इस तरह की एडवाइजरीज पहले स्तर पर किसानों तक पहुंचती है, वो जो समाचार माध्यम है या सरकारी जो माध्यम है उनके जरिए जाता है, आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनके जरिए जाता है, तो वो सब एडवाइजरीज उस तरीके से, अब तो तमाम सारा प्राइवेट सेक्टर भी एक्टिव है एग्रीकल्चर में, उनके जरिए भी जाता है। तो ये तो एक तरीके से किसान को सूचना पहुंचाने का काम है कि आप अपना फैसला आप ले सकते हैं इस परिस्थिति में, आपको के लिए क्या उचित फैसला है, तो ये किसान के स्तर पर है और ये सरकार दोनों के बीच में ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन का एक जो फ्लो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, मतलब बारिश नहीं होगी कम होगी तो उसको तो नहीं कर सकते। हाँ, उसको मिटिगेट करने के लिए और कई सारे स्टेप्स जो है जो सरकार लेती है या जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज लेती है वो फिर अगले कदम इसके बाद नेक्स्ट जो अगली स्टेज में शुरू होता है।
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे और देश के बहुत सारे श्रोता और किसान भी समझना चाहेंगे कि क्या क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, जो दो फैक्टर पिछले 20-25 वर्षों में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्या उनका भी एल नीनो की घटनाओं से सीधा संबंध है? जो डेटा है वो इस बारे में क्या कहानी कहता है?
2: ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज भी है, और एक चीज हमें और ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है ना वो इतनी ज्यादा है, और ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ये थोड़ा एडिड प्रेशर है। मैं ये कहूंगा कि सारा नहीं, जो लोग मानते हैं सारा क्लाइमेट चेंज नहीं, 95% तो आपकी क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी इतनी है, मैंने जैसे बताया कि 2002 में कितनी जबरदस्त पूरा जून में बारिश ही नहीं मिली आपको, सो नेचुरल वेरिएबिलिटी हमारी बहुत ज्यादा है, और ऊपर से ये अब एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे ऊपर आ गया है। और लोगों का मानना है कि भाई जिस तरह से कि मतलब एटमॉस्फेयर की वार्मिंग हो रही है, हीट वेव्स हो रही है, वैसे ओशन भी वार्म कर रहे हैं, सो नेचुरली वहां पे भी वार्मिंग होगी तो शायद और एल नीनो स्ट्रांग हो जाए, वो उनका मानना है। बट मेरा फिर भी मानना है कि हमने इससे भी वर्स्ट सिचुएशन को झेला है, तो हमारी यदि तैयारी अच्छी होगी, हमारी वार्निंग अच्छी होगी, जिसे हम कहते हैं ना फोर वॉर्न्ड इज फोर आर्म्ड, आपने वार्निंग पहले से दे दी और आपने तैयारी करी है कंटीजेंसी प्लान की, आप महावीर जी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। हमारी यदि 200 डिस्ट्रिक्ट जो है हमने चिन्हित कर दिए हैं जो कि एग्रीकल्चरली स्ट्रेस प्रोन है,
1: प्रभावित होंगे,
2: वो पहले से चिन्हित है। ICAR के बाद निकरा प्रोजेक्ट है, न्यू इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, वो हमारे पहले से तैयार ही है। 2500 के करीब हम लोगों के पास कहते हैं ड्राउट स्ट्रेस रिलेटेड जो है, फ्लड रिलेटेड जो है वेराइटीज हैं जो फ्लड में भी काम कर जाएंगी, ड्राउट हुआ तो ड्राउट में काम कर जाएंगी, और एल नीनो में जरूरी नहीं कि ड्राउट ही होगा, एक्सट्रीम वेदर भी हो जाता है और फ्लडिंग भी हो जाएगी, तो उसकी सब वेराइटीज तैयार है। आपने बड़े अच्छा बताया महावीर जी ने, यदि थोड़ा डिले हो जाएगा, इतना ज्यादा भी डिले नहीं हुआ, और डिले हो गया जहां तो आप 4 महीने की जगह छोटी क्रॉप लगाइए, शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप चले जाइए, और क्रॉप्स भी ऐसी हों जो कि मिलेट टाइप की होती हैं, जिनको कि मतलब कि आपको कहने का मतलब पानी कम चाहिए, यदि 3 हफ्ते ड्राई स्पेल रही तो वो सर्वाइव कर जाती है। और मजे की बात यह है कि आज की डेट में

0: क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप बना हुआ है कृषि मंत्रालय में और मैं उसका पार्ट था। आईएमडी को काफी सालों मैंने रिप्रेजेंट किया, तो वहां हम लोग ये डिस्कशन होता है कि भाई पिछले हफ्ते ऐसा मौसम रहा, अगले हफ्ते ऐसा होने वाला है, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट ये है। तो अब सारे एक्सपर्ट बताएंगे फर्टिलाइजर अवेलेबल है, शॉर्ट ड्यूरेशन यदि बोना है तो क्या उसके बीज भी उपलब्ध है कि नहीं है। तो ये सब तैयारी रहती है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सब कुछ, सबकी तैयारी, पानी है रिजर्वायर में कितना है। एक समय आ गया था कि मुंबई में पीने का पानी की किल्लत होने वाली थी, मगर वो और एक डेफिसिट 20-21% पहुंच गया था मानसून का, वो शायद अब 10 के आसपास आ गया है, तो वो भी काफी कवरेज तो हुई है। तो मगर मेरा कहने मतलब है कि तैयारी सरकार की अच्छी है, आपके पास हर तरह की वैरायटी है, और साथ साथ जो मौसम पे आधारित खेती करनी है, जो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न हो वो हमेशा ऐसे होने चाहिए कि जहां का एग्रो क्लाइमेट है अकॉर्डिंग नहीं है। ऐसा ना हो जैसे कि शुगर केन महाराष्ट्र लगा रहा है सेमी एरिड एरिया है, पैडी लगा रहा है कौन पंजाब सेमी एरिड एरिया, ये क्रॉप ह्यूमिड एरिया की क्रॉप है क्योंकि वहां पानी फ्री मिल रहा है उनको, बिजली फ्री है, तो वो इसलिए वो लगा रहे हैं और उसको प्राइस अच्छा मिलता है। मगर ऐसी जगहों पे लगाने हैं मिलेट्स, एक चीज। और दूसरी बात जो मौसम विभाग समय समय पे बताता है आपको, गुड वेदर प्रैक्टिसेस एंड बैड वेदर प्रैक्टिसेस। यदि आपका पानी बरस रहा है तो भैया इस समय हार्वेस्टिंग कर लो ना, बरसात से पहले से आपके सारे तालाब वालाब साफ करके उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है हमको
1: जी।
0: तो वो करके तैयारी रखें अपनी। अच्छा फिर उसके साथ ये भी करें, बैड वेदर है जब मतलब कि भाई अलिनो है इस बार, मॉनसून थोड़ा खराब होने का चांसेस है, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: तो ये गुड वेदर कोड बैड वेदर कोड बिल्कुल बनी पड़ी है, तो उसके लिए कृषि मंत्रालय, मौसम विभाग, एनडीए में सारे जो हैं बिल्कुल आपस में उसमें रहते हैं, और समय समय पर क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप मीटिंग्स होके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और सबको ये जानकारी दी जा रही है इस समय क्या करना है आपको। और सबसे बड़ी उसमें बात मैं कहूंगा कि सरकारों को थोड़ा सा ये मेरे को और स्ट्रेस ये देना पड़ेगा, हमें इरीगेशन जो है ना, कैनाल इरीगेशन और दूसरे इरीगेशन को और बढ़ाना है। देखिए जो स्टेट्स पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जिनमें इरीगेशन फैसिलिटी है या फिर ग्राउंड वाटर उनको मिल जाता है, वहां कभी फसल नहीं खराब होती। आप देख लीजिए वहां पे यदि बारिश कम हो जाए ना, बल्कि फसल और अच्छी होती है क्योंकि धूप अच्छी मिल रही है, बीमारी नहीं होती वहां पर, फंगस नहीं आती है, और पानी जब चाहिए वो निकाल के सोई कर देते हैं। और ये भी ध्यान रख लीजिए क्रॉप को, जैसे मान लीजिए 4 महीने की है तो 4 महीने पानी नहीं चाहिए
1: जी।
0: सिर्फ 4 और 5 क्रिटिकल स्टेजेस होती है, उन 5 क्रिटिकल स्टेजेस पे ही पानी चाहिए। और कई बार ऐसा भी देखा गया वर्षा तो सामान्य है, सामान्य से ज्यादा है, पर वो क्या हुआ कि महीने के शुरू में मिल गई, एंड में मिल गई, और बीच में 3 हफ्ते नहीं मिली,
1: जब जरूरत थी तो नहीं मिली,
0: नहीं मिली। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब मौसम विभाग आज की इसमें आपको फोरकास्ट तो दे रहा है कि भाई मानसून की वर्षा कम होगी, पर मेरा ये मानना है ऐसा भी तो हो सकता है कि 90% के 85 भी हो गई, और 85 भी इतनी है कि आपकी जो फसलें ज्यादातर जो धान और शुगर केन को छोड़ दीजिए, बाकी को सिर्फ 500 मिलीमीटर वर्षा चाहिए, और यदि आपके समय समय पर मिल गई ये वर्षा तो आपकी फसल निकल जाएगी। मगर उसके साथ साथ किसानों को क्या करना है, किसान क्या कर रहा है, उसके पास एक लाइफ सेविंग इरिगेशन भी नहीं है तो वो तो जुआ खेल रहा है। एटलीस्ट 1 या 2 लाइफ सेविंग इरिगेशन तो रखे, जैसे 3 हफ्ते का पीरियड आया नहीं मिली वर्षा तो एक लाइफ सेविंग इरिगेशन यूज कर लिया, थोड़ी देर बाद उसको जरूर वर्षा मिलेगी। कभी ऐसा नहीं होता कि आपको 5 हफ्ते वर्षा मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं होता कभी भी। तो ये तैयारी हमारी होगी तो हम किसी भी सिचुएशन को झेल सकते हैं, इससे भी वर्स्ट सिचुएशन हमने झेल ली है और इसको भी हम अच्छे से झेलेंगे।
1: हरवीर जी, जलवायु अनुकूलन क्षमता यानी क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करते हैं, और आज जो हमारा चर्चा का विषय का टॉपिक है वो भी इसी पर आधारित है। सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे ये होता क्या है, और व्यवहारिक रूप से किसान अपने खेत को जलवायु अनुकूल कैसे बना सकता है।
2: जो वेदर का जो एक पैटर्न है और क्लाइमेट, वो उसमें बड़े तेजी से बदलाव आ रहे हैं। एक तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, एक्सट्रीम हीट, सडनली वेरी हैवी रेनफॉल और ड्राई स्पेल, तो ये जो इंसिडेंट्स है ये सीधा क्लाइमेट चेंज का इंडिकेशन है, और उसी से ये होता है जब अनयूजुअल इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब इसमें एक तो पक्ष ये है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं कि हम क्लाइमेट रिजिलिएंट क्रॉप यानी कि ऐसी प्रजातियां जिसमें ऐसा लचीलापन है सर्वाइव करने के लिए कि अगर दोनों चीजों में, फ्लड में भी सर्वाइव कर जाए उस तरह की भी किस्में, और अगर उसको स्ट्रेस आता है उसमें भी वो सरवाइव कर जाए कम पानी में, कम न्यूट्रिशन में। ये इस तरह की प्रजातियां वैसे तो बहुत बड़े पैमाने पर ICAR और हमारे जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें उन्होंने डेवलप की है, बट इसमें अब ये देखना पड़ेगा कि वो किसानों की पहुंच में कितना है। आप कहें कि हमने 2200 वेराइटी रिलीज कर दी, बट अगर किसान को यही नहीं पता कि इनमें से कौन सी वेराइटी ऐसी है जो आज की परिस्थिति में मेरे लिए उपयोगी है, और उससे भी आगे क्या उसका सीड उसे अवेलेबल है, वो कहाँ से अवेलेबल है, वो क्या किसी पब्लिक सिस्टम का जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो नेशनल सीड कॉरपोरेशन हो या कुछ कोऑपरेटिव के संस्थान है वो हो, या फिर प्राइवेट जो कंपनीज है उनके जरिए, या उस तरीके से उपलब्ध है क्या? और उसका एग्जैक्टली देखिए होता

0: क्या है कि अभी भी ये टेंडेंसी है, और इसमें क्योंकि जब आप इनकम पैरिटी की बात करते हैं, क्रॉप की अल्टीमेट की बड़ी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो बिजनेस, किसान के लिए वो एक व्यवसाय है अपने सर्वाइवल का, अपने वेलबींग का। शर्मा जी कह रहे हैं कि पंजाब में जो है आपको धान बहुत ज्यादा नहीं उगाना चाहिए, बासमती उगाना चाहिए, गैर बासमती में हाई वैल्यू क्रॉप है, गैर बासमती आप ईस्टर्न इंडिया के लिए छोड़ दीजिए, वहां बहुत पानी है। लेकिन अब क्या है कि अगर वो वहां पर कॉटन ग्रो करता है, कॉटन में कम पानी चाहिए, लेकिन क्या है कि पिछले 10 साल 15 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कॉटन की क्रॉप बहुत वल्नरेबल हो गई है पेस्ट एंड डिजीज के लिए। हम नई किस्में नहीं ला पा रहे हैं जो किसान को एश्योर करें कि इस बार इसको लगाइए, पानी भी बचेगा, आपकी आमदनी भी ज्यादा होगी। तो जब तक आप उसको एक कंप्लीट सोल्यूशन नहीं देंगे फार्मर को, और उसका पहला प्रायोरिटी है मेरी आमदनी कैसे हो, जैसे मिलेट्स की बात कही है, अगर आप मिलेट ग्रो करेंगे और उसके लिए मार्केट नहीं होगा, उसके लिए प्रोक्यूरमेंट का सिस्टम नहीं होगा, हमारे जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं बड़े पैमाने पर उसको कंज्यूम नहीं करेंगे, तो फिर वो मिलेट के लिए उसको दाम कैसे मिलेगा। ये मल्टीपल चीज, जैसे मैंने कहा दालों का प्रॉब्लम है बट फिर भी नहीं ग्रो कर पा रहे फार्मर्स। तो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का आता है, और बहुत सारी ऐसी क्रॉप हमारी है जहां पर अभी तक हमें टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा है, डिस्पाइट वर्ल्ड मोस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्च सिस्टम इन एग्रीकल्चर। तो अब उसमें हमारे साइंटिस्ट की भी जिम्मेदारी बनती है, देखिए किसान साइंटिस्ट नहीं हो सकता। दूसरे हमारा जो एक्सटेंशन सिस्टम है, एक्सटेंशन का जो बड़ा रोल है वो बहुत बड़ा रोल है, एक्सटेंशन सिस्टम को लगातार रिफॉर्म करने की बात हो रही है। इस बजट में भी विस्तार की बात आई है, एआई की बात हम लोग कर रहे हैं कि कैसे किसानों को बेहतर, ये सारा एक्सटेंशन वर्क है, उसको कैसे एक बेहतर जानकारी उपलब्ध हो, और ये राज्यों का विषय ज्यादा है एग्रीकल्चर। तो जो राज्य सरकारें हैं उनकी भूमिका इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है, और वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है या जो बाकी जो लोग हैं जो एक्सटेंशन में काम करते हैं, उनको मेरे ख्याल से ज्यादा सशक्त करने की और उनका नंबर बढ़ाने की जरूरत है। तो ये तैयारियां तभी किसान समझ पाएगा। दूसरे क्या है कि जैसे हमारा रेनफेड एरिया अथॉरिटी है वो वाटरशेड सिस्टम चलाता है, और उसके लिए एक अच्छा खासा बजट है, हमारा जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसमें वाटरशेड के लिए, तो ये उन इलाकों के लिए है जो ये ड्राउट प्रोन इलाके हैं। जैसे आपने कहा कि अगर बारिश नहीं हुई और एक सिंचाई भी उस वक्त उसको मिल गई तो क्रॉप सर्वाइव कर जाएगी, तो वहां पर जो वाटर बॉडीज है या पॉन्ड्स है या लेक्स है उनमें चेक डैम बना के और पानी को रोका जाता है, और फिर वो इक्विटेबली जो फार्मर्स है वहां के, बहुत जगह तो क्या है कि फार्मर्स के अपने कलेक्टिव्स और यूनियंस बनी हुई है, ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, वो आपस में तय कर लेते हैं प्रायोरिटी के आधार पे कब हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो जो इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो जिस तरह की परिस्थिति ड्राउट के टाइम पे आती है उसमें बहुत कारगर होते हैं, क्योंकि आपकी फसल को एक पानी चाहिए और आपके पास ऐसा ट्यूबवेल नहीं है, बोरवेल नहीं है कि आप इमीडिएटली सिंचाई कर सके। आप छोटे किसान हैं, हमारे 89% जो फार्मर हैं वो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट की जो कैपेसिटी है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बहुत सीमित है, तो ऐसे में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए काम करता है। हाँ ये है कि पिछले कुछ वर्षों में कई चीजें हुई हैं, जैसे कि सोलर पंप का हुआ है, फिर हमने माइक्रो इरिगेशन पे फोकस किया है, माइनर इरिगेशन पे फोकस किया, वो सब इस तरीके के इलाकों के लिए है। और आप जो है कि कम पानी में टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रिप है या स्प्रिंकलर इरिगेशन है, राजस्थान में बड़े पैमाने पर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल होता है, फ्लड इरिगेशन नहीं होता हरियाणा पंजाब वेस्टर्न यूपी की तरह, क्योंकि उनको पता है कि पानी की एक एक बूंद की वैल्यू क्या है। तो ये जो चीजें हैं ये सारा सिस्टम आपको इस तरह की परिस्थिति से लड़ने में मदद करता है। और इसमें ये भी बात है कि जैसे मैंने कहा कि किसानों को सही जानकारी, प्रशिक्षण और जो अवेलेबिलिटी है वो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी हो, फर्टिलाइजर की जब हम बात करते हैं, या बीमारी आ जाए तो जो एग्रोकेमिकल्स हैं उनकी हम बात करते हैं, और पानी, लेकिन पानी सबसे किसी भी फसल को आगे तक ले जाने के लिए, उसको तैयारी और उसके उत्पादन के लिए वाटर इज द फर्स्ट रिसोर्स और फॉरमोस्ट, सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है वो पानी है।
1: आनंद जी आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अगर हम आकाशवाणी की बात करें तो आकाशवाणी की लोकप्रियता इसलिए भी है क्योंकि जहां सुविधाएं नहीं है वहां लोग आकाशवाणी को सुनते हैं। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, जो एआई के थ्रू ऐप को भी समझते हैं, मौसम वैज्ञानिक जो सूचनाएं देते हैं वो भी उन तक पहुंच रही है। जैसा कि हरवीर जी ने कहा कि 89% के आसपास छोटे किसान हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अब भी तकनीक से दूर है, वहां तक मौसम विभाग मौसम की चेतावनी जानकारी पहुंचाने के लिए क्या कुछ नए कार्यक्रम शुरू कर रहा है या किया है, उसके बारे में थोड़े हमारे श्रोताओं को जानकारी दें।
2: बिल्कुल, इसमें हमारे मौसम विभाग ने एक ऐप बनाया है मेघदूत,
0: उस मेघदूत में जो है मौसम की पूर्वानुमान होता है और

0: मौसम पे आधारित कृषि सलाह होती है, क्योंकि देखिए दो तरह की सलाह होती है, एक होता है पैकेज एंड प्रैक्टिस ऑफ खरीफ क्रॉप, रवि क्रॉप, कि इतनी खाद लगाना है, इतना इरिगेशन लगाना, वो एक नॉर्मल एडवाइजरी है। पर हम जो देते हैं एडवाइजरी वो है वेदर बेस्ड एडवाइजरी, मौसम पे आधारित, यानी कि बारिश आने वाली है तो भैया इरिगेशन पोस्टपोन कर दीजिए, आपका पानी बच जाएगा, बिजली बच गई। मान लीजिए आपकी फसल में बीमारी लगी है, आपको कहते हैं स्प्रे करना है केमिकल, बारिश आने वाली है, मैं कहूंगा नहीं अभी पोस्टपोन करिए, बारिश के बाद करना, नहीं तो आपका केमिकल बह जाएगा और आपका पैसा भी वेस्ट जाएगा और वो जाके ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेगा या आपके पॉन्ड को करेगा, फिश में जाएगा, आप फिश खाओगे, आपकी हेल्थ को कैंसर होगा, एनवायरमेंट को खराब करेगा। तो वो एक बड़ी अच्छी बात होगी। तो इसमें मेघदूत एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हमारे पास वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी सारी जानकारी रहती है, और आपने कहा फोन, फोन उससे भी मिलता है, और उसमें भी आजकल ऐसा है कि आप यदि पढ़ नहीं सकते हैं तो आप सुन सकते हैं उसको, वॉइस में ला सकते हैं। और उसके और इम्पोर्टेंट बड़ी चीज है कि आप हर, जैसे कि विलेज के कह लीजिए पंचायत लेवल पर कियोस्क खोल दें, जहां पे भी एक एक्सपर्ट रहेगा, उसके पास कंप्यूटर है, वो आप कंप्यूटर पे किसान वहां चले जाएगा, वो देख के फटाफट उसको बता देगा जी मेरे यहाँ का वेदर क्या है, बता दीजिए फटा देख देख के, वो एक्सेस करके उसको सिंपल भाषा में बता देगा, कौन सी फसल एडवाइस करेगी वो भी बता देगा, कहाँ अच्छे दाम मिलेंगे वो भी बता देगा। तो ये जो एक्सटेंशन कियोस्क है, ये मुझे लगता है जिसे कहते ना, जैसे कि एक एक सेंटर जरूर रहने चाहिए इन एरिया में जहां पे किसान आके ये सब चीजों को वो कर ले एक। और उसके अलावा हमें और क्या करना है कि जो भी मौसम की जानकारी है और सलाह है वो हर गांव के अंदर एक जो वहां का सरपंच होता है उसको जरूर भेजे, जीते हुए को, और एक हारा हुआ सरपंच उसको भी भेज दे, क्योंकि जीता हुआ अपने बंदों को देगा, दूसरे को ना दे, तो उसको भी दे दीजिए। तो इन दो के पास पहुंच गया तो सोच लिया आपके गांव के सब लोगों को तो जानकारी पहुंच गई। तो यदि ये हम करते हैं, वेबसाइट भी है, रेडियो टीवी अखबार भी है, और साथ साथ ऐप भी है, वेबसाइट भी है, फोन भी है, और ये कियोस्क भी है, और सबसे बड़ा रोल जो है मैं आज जो मानता हूं वो है रेडियो का। एक समय ऐसा था जब हम बचपन में बड़े हो रहे थे तो रेडियो बहुत पॉपुलर था, टीवी अभी आया नहीं था, या आया भी था तो किसी के पास होता नहीं था, और फिर जब टीवी आया तो रेडियो की इंपॉर्टेंस कम हो गई। मगर मैं अब ये कह रहा हूं ये अब ये युग है जो रेडियो का युग है, कम्युनिटी रेडियो। तो छोटे छोटे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलने होंगे पूरे हमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बल्कि अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे अलाउ कर दिया है। तो कम्युनिटी रेडियो खोलिए, और रेडियो भी कैसे आ गए हैं आज की डेट में, जिसमें बिजली नहीं चाहिए, बैटरी नहीं चाहिए, हैंड वाइंडिंग है, आप पीछे हैंडल लगाए 60 बार घुमाइए एक घंटा चलेगा, और उसमें टोन अलर्ट भी है, यदि मौसम विभाग ने कोई वार्निंग दी है तो वो वार्निंग भी वो टू की आवाज करेगा कि भाई इसको ऑन करना है। तो इस तरह की जो आज का आ गई, तो मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो को पॉपुलराइज कराना है, लोगों को सरकारें फ्री बांटे रेडियो इनको, जिसमें बिजली नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, ऑल वेदर कम्युनिकेशन हो जाएगा आपका, कोई भी डिजास्टर हो उस समय भी ये रेडियो आपके काम आएंगे। तो मुझे लगता है ये सब चीजें हम करें तो हमें जो लास्ट माइल, मतलब आखिरी आदमी तक हमें पहुंचना है, वो तो एक है ही है, उसके साथ साथ है क्रूशियल माइल कनेक्टिविटी, यानी कि इस समय यदि डिले हुआ मानसून तो कहां हुआ, महाराष्ट्र वाले इलाके में, आसपास के इलाकों में, तो उनको पहले से सूचित करना भाई मानसून आपके यहाँ डिले है और इतने दिन का डिले होने वाला है, तो आप अभी रुक जाइए थोड़ा, एकदम स्विंग पे मत जाइए, या फिर वर्षा अभी थोड़ी सी मिली है तो कई बार क्या होता है कि मॉइस्चर आया पर इतना नहीं है कि आपको वो सर्वाइव करेगा लॉन्ग पीरियड में, आपने सोइंग तो कर दी और बाद में एक हफ्ते में उड़ गया वो मॉइस्चर, तो आपका जर्मिनेशन प्रभावित हो जाएगा। तो सोइंग रेन कब होंगी तो वो भी मौसम विभाग बताते हैं, जो हम मौसम आधारित एडवाइजेस देते हैं, व्हेन टू सो, व्हेन टू हार्वेस्ट, व्हेन टू इरिगेट, हाउ मच टू इरिगेट, व्हेन टू स्प्रे केमिकल्स, ये सारी चीजें मौसम आधारित जो कृषि सलाह दी जाती है मौसम विभाग और कृषि मंत्रालय दोनों से मिलकर, वो बहुत पॉपुलर हो रही है। तो मुझे लगता है वो सरकार को इसमें पूरा जोर देना चाहिए, और इस सर्विस को हमें हर किसान तक पहुंचाना है, कैसे भी पहुंचाना है, और यदि हम ये पहुंचाते हैं तो डेफिनेटली हम प्रिपेयर होंगे, किसान प्रिपेयर है, और जैसा आपने कहा एक उसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करना है, एक्सटेंशन सर्विस बेहतरीन होनी चाहिए, कहां से फर्टिलाइजर मिलेगा, कहां से केमिकल मिलेंगी, कहां से सीड मिलेगा, कहीं वो डुप्लीकेट तो नहीं ले जा रहा, उसको गलत बीज तो नहीं मिल रहा, कहीं वो सुनिश्चित करना होगा, और उसके प्राइस भी ऐसा करना, ये ना हो किसी वो ऐसे दुकानदार से ले जाए जो उसको 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, तो लो इंटरेस्ट पे ये सारी चीजें उन्हें मिले। और साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एश्योर्ड इरिगेशन, और वो चार नहीं पांच नहीं, एटलीस्ट एक या दो भी आपके पास लाइफ सेविंग इरिगेशन होंगे तो फसल आपके निकल जाएगी।
1: हरवीर जी, कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कुछ व्यवहारिक सवाल पर चर्चा कर लेते हैं। एलनीनो की बात हम कर रहे हैं, अगर एलनीनो के कारण भारत के कुछ हिस्सों में मॉनसून से कम वर्षा होती है तो आपकी क्या सलाह है किसानों को कि वो सिंचाई के किन वैकल्पिक माध्यमों को अपनाएं, अगर कुछ राज्यवार आप बता सकें तो।
2: देखिए, जो आपका जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसमें राजस्थान को आप छोड़ दें, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी का बड़ा हिस्सा है, सिर्फ वेस्टर्न यूपी नहीं, अब ईस्टर्न यूपी और उधर भी कैनाल इरिगेशन है, मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर इरिगेशन में काम हुआ है, और हमारा जो ईस्टर्न इंडिया है वहां पर बोरवेल्स जो है। तो अब यह देखना पड़ेगा कि वो जो आपके सिंचाई के जो संसाधन है

0: वो दुरुस्त हो, जब भी जरूरत हो आप उसका इस्तेमाल कर सकें, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरे देखिए क्या है कि ऐसी परिस्थिति में सरकारें किसानों की मदद करती रही हैं, उसमें ये है कि क्या अगर इवन आपका जो पावर सप्लाई है उसका कंस्ट्रेन भी है तो भी आप इरिगेशन के लिए एक्स्ट्रा पावर उपलब्ध कराते हैं और उसका एलोकेशन किया जाए, पहले से प्लानिंग करके रखना चाहिए। उसी तरीके से कई जगह जहां कमजोर किसान है वो सरकार देखे किस तरीके से उसका उनको डिसीजन लेना है, लेकिन जब अगर बारिश कम होगी तो किसान की लागत बढ़ती है क्योंकि उसको सिंचाई के ऊपर अधिक खर्च करना पड़ता है, तो ऐसे में क्या उनको सिंचाई के लिए कुछ आर्थिक मदद स्पेशली उस टाइम के लिए दी जा सकती है, पहले भी दी जाती रही है, डीजल वगैरह के ऊपर सब्सिडी दी जाती रही है। और मेरा मानना है कि सरकार ने अब समझ लिया है और काफी कुछ निर्भर करेगा, जैसे शर्मा जी ने बताया कि मॉनसून का क्या होता है, कि मॉनसून अगर 10% कम भी रहता है उसकी अहमियत क्या है कि उसका जो हमारा मॉनसून का पीरियड है जून टू सितंबर, उस पूरी अवधि में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है। अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है तो कोई मुश्किल नहीं है, और अगर पता लगा आपको जुलाई में बहुत बारिश हो गई उसके बाद अगस्त में आपके पास बारिश नहीं है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी और समय के हिसाब से जो हमारा विभाग है, कृषि विभाग है या सरकारों के जो सिंचाई विभाग है और जो ये तमाम सारे इन सबको विभागों को आपस में तालमेल बैठा कर कि किसान को कहाँ जरूरत है वहां उसको मदद करने की जरूरत है। और किसान भी अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे अब बहुत चीजें बदली हैं, बदलाव कृषि में भी आया है, वो समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, चीजों को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं और फैसले भी बेहतर तरीके से ले सकते हैं, तो एक अच्छा तालमेल बैठा है तो इस मुश्किल को पार कर सकते हैं।
1: जी हाँ, मौसम बदलेगा, चुनौतियां आएंगी और एलनीनो जैसी महाशक्तियां हमारी तैयारियों को परखेंगी भी, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत के किसान ने कभी हारना नहीं सीखा। विज्ञान की सटीक भविष्यवाणियां और कृषि के आधुनिक तौर तरीके अगर हमारे अनुभव के साथ मिल जाएं तो सूखी मिट्टी से भी सोना उपजाया जा सकता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम मौसम के बदलावों से डरे नहीं बल्कि अपनी रणनीति से उसे मात दें। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए हरवीर जी आपका, आनंद जी आपका बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद। धन्यवाद।
1: हम अपने तमाम श्रोताओं से बस यही कहना चाहते हैं कि बदलते दौर में सजग रहिए, वैज्ञानिक सलाह अपनाइए और अपनी खेती को सुरक्षित बनाइए। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन

अभिनंदन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रम्बानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबाह अल खालिद अल सबाह से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है। इससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्यूक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मार्टेंस को और यूक्रेन की मार्ता कोस्यूक ने जैस्मिन पॉलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। उन्होंने कहा कि वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और संघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज और रूस के उप विदेश मंत्री दिमित्री ल्यूम्स्की ने की। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। बैठक में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIANNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा कि ईरान के साथ युद्ध विराम अब समाप्त हो गया है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्हें संदेह जताया। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने ईरान में 80 से अधिक ठिकानों पर सैन्य हमले किए हैं। अमेरिका ने कहा कि ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि इन हमलों में सटीक निशाना लगाने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया गया और इनका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को कमजोर करना था। उधर ईरानी सेना ने कहा कि होर्मुज़गान और शहर प्रांतों में तटीय ठिकानों और नागरिक सुविधाओं को निशाना बनाया गया। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया कि उसने जवाबी कार्रवाई में पड़ोसी देशों में मौजूद अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया। इस बीच कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 2 बैलिस्टिक मिसाइलों और 13 ड्रोन को मार गिराया। कतर ने बहरीन और कुवैत पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और दोनों देशों की संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इस बीच भारत ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इन घटनाक्रमों से क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव कम करने तथा आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। भारत ने ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार की निर्बाध आवाजाही बनाए रखने पर भी बल दिया है। साथ ही सभी पक्षों से बातचीत और कूटनीति के माध्यम से इस संकट का शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान निकालने का आग्रह किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के चालू वर्ष में 7% की वृद्धि दर के अनुमान के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। IMF द्वारा आज जारी की गई प्रमुख अर्धवार्षिक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार अगले वर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 6.4% की मामूली वृद्धि का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुमानित प्रदर्शन को निजी उपभोग और सेवा गतिविधियों में मजबूत गति का समर्थन प्राप्त है। भारत की वृद्धि वैश्विक अनुमानों से दोगुने से भी अधिक है। रिपोर्ट में इस वर्ष विश्व अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 3% बताई गई है। इसमें अगले वर्ष 3.4% की वृद्धि होने की उम्मीद है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने वार्षिक ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 यानी इस वर्ष की दुनिया के सबसे अच्छे और खराब शहरों की एक सूची जारी की है। IEU ने 173 शहरों में कराची को 170वां स्थान दिया है। इस सूचकांक में कराची से भी खराब स्थिति वाले शहरों में बांग्लादेश का ढाका, सीरिया का दमिश्क और लीबिया का त्रिपोली शहर शामिल है। IEU की ये रैंकिंग वैश्विक स्तर पर शहरी जीवन की सुगमता और लचीलेपन को मापती है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्त्युक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक ने जैस्मिन पाउलिनी को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त। भारत ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान जताया कि भारत इस वर्ष 7% की वृद्धि दर के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य के लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I'm Renuka with the World News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Melbourne to take part in the third India-Australia annual summit. India and Russia reaffirm commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is over. India expresses deep concern over escalation of tensions in West Asia. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. And in Wimbledon tennis, Marta Kostyuk of Ukraine and Czech player Linda Nosokova enter women's semis, single semifinals. Prime Minister Narendra Modi arrived at Melbourne in Australia this evening on the second leg of his three-nation tour after concluding his successful visit to Indonesia. Upon arrival in Melbourne, Mr. Modi was warmly received by Australian Minister for Housing, Minister for Homelessness and Minister for Cities, Clara Neal. Our correspondent covering the Prime Minister's Australia visit has filed this report.
5: The air in Melbourne buzzed with immense enthusiasm today as the Indian diaspora turned out in full force to welcome Prime Minister Narendra Modi. The high-profile reception was punctuated by a magnificent cultural showcase that beautifully illustrated the deepening cross-continental friendship through the universal language of music and dance. Before the stage came alive with the performances, the Prime Minister briefly interacted with the community members, sharing warm greetings with the gathered diaspora. Following this heartfelt interaction, the evening commenced with an extraordinary symbolic duet between the didgeridoo, an ancient indigenous Australian wind instrument traditionally crafted from hollow eucalyptus trees, and the Indian tabla. This was followed by a captivating Kathak recital led by renowned Melbourne-based dancer Miss Sanchita Abrol. The artistic showcase concluded with a powerful performance by the 10-piece Australia-India Orchestra, who delivered a stirring symphony rendition of A.R. Rahman's iconic anthem, Ma Tujhe Salaam, deeply moving the gathered audience. Suhas Ram, Akashwani News, Melbourne.
4: During his three-day visit, Mr. Modi will participate in the third India-Australia Annual Summit. He will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both countries. The Prime Minister, in a social media post, said he is looking forward to talks with his Australian counterpart, Anthony Albanese. Earlier in the day, Prime Minister Modi visited the UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta along with Indonesian President Prabowo Subianto. The two leaders toured the 9th century temple complex. In a joint press statement at the temple premises, Prime Minister Modi described the visit as a deeply spiritual and memorable experience.
2: Yogyakarta ke is bhavya mandir complex mein ab jab hum punarnirman ka kaam karne ja rahe hain aur ye UNESCO ka world heritage hai, mujhe pura vishwas hai aaj ke baad Bharat ke yatri to yahan zarur aayenge. Duniya ke dur dur kshetron mein kahin par bhi jaye, hame कहीं न कहीं भारत के सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं.
4: India and Russia today reaffirmed their commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora, including at the UN, BRICS, EAG and SCO. The Ministry of External Affairs said that the 14th meeting of India-Russia Joint Working Group on Counterterrorism was held in New Delhi. Secretary West, Ministry of External Affairs, C.B. George, and Deputy Foreign Minister of Russia, Dmitry Lubinsky, co-chaired the meeting. Both sides condemned terrorism in all its forms and manifestation, including cross-border terrorism, and called for concerted action against terrorists and terrorist group and their proxies and affiliates. They shared their assessment on regional and global terrorism and agreed to enhance cooperation to address challenges such as radicalization, terror financing and misuse of new and emerging technologies for terrorist purposes. U.S. President Donald Trump today announced that the ceasefire with Iran is over. Speaking to reporters at the North Atlantic Treaty Organization NATO summit in Ankara, Trump said that he does not want to waste his time negotiating with Iran.
6: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're led by sick people. They're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want. But I don't like these people.
4: Trump's statement comes ours. After the U.S. carried out a new round of military strikes against Iran, targeting more than 80 cities. The U.S. said the strikes were in response to Tehran's attacks on commercial ships in the Strait of Hormuz. The Iranian military said coastal bases and civilian facilities were struck in the provinces of Hormozgan and Mashhad. According to the Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, strikes also hit Bandar Mashhad, southwest Iran. The IRGC said it had responded to the strikes by targeting U.S. assets in neighboring countries as sirens went off in Bahrain and Kuwait.